नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि। तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 47 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वह संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसी की मान्यता है कि हमारा कोई भी कार्य प्रथमेश भगवान श्री गणेश के स्मरण किए बिना संपन्न नहीं होता, क्योंकि उनके नाम स्मरण से ही जीवन में आई बाधाएं दूर हो जाती है और सभी कार्य संपन्न होते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं।

हमारा जीवन असंख्य कठिनाइयों से भरा हुआ है। मनुष्य को कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता होती है, और जब जीवन रूपी गाड़ी प्रभु भगवान श्री राम के हाथों में सौंप दी जाए तो जीवन का उद्धार सुनिश्चित है।

जिस प्रकार मनमोहना भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी प्राणी मंत्र मुक्त हो जाते हैं और अपने दुख दर्द भूल जाते हैं, उसी प्रकार मुरली मनोहर का ध्यान करने से और बांसुरी की स्वर लहरियों का श्रवण करने से हमारा मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमने लगता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आज का विषय है कमाई को खर्च करने का सही मार्ग।
1: हर व्यक्ति अपनी मेहनत और किस्मत के आधार पर कुछ ना कुछ पाता ही है, कमाता है और खर्च करता है। अगर ये कहा जाए कि ईश्वर सभी जीवों को स्थूल शरीर के संचालन हेतु कुछ ना कुछ देता है तो गलत ना होगा। हमारे ऋषि मुनि भी कमाई करते थे, उसे उचित ढंग से खर्च करते थे, इसी बात पर वे विशेष बल दिया करते थे। कमाई चाहे स्थूल संसार से की जाए या सूक्ष्म संसार से, अर्थात भौतिक जीवन की कमाई अलग, प्रभु के नाम की कमाई अलग, उसे किसी न किसी विधि से खर्च करना तो पड़ता ही है, अन्यथा वह स्वतः ही अकारण चली जाएगी। ऐसी कमाई ना तो कमाने वाले के काम आती है, ना ही किसी दूसरे के काम। कमाई की दौलत कई प्रकार की होती है, विशेषतः अच्छे सच्चे और पवित्र ढंग से की गई कमाई, और यही फलीभूत होती है, सबके लिए सुखकर और समृद्धिकारक होती है। वहीं गलत ढंग से की गई कमाई कमाने वाले और खाने वाले दोनों ही के लिए अच्छे फल वाली साबित नहीं होती, इससे वातावरण कलुषित होता है। अब बात कमाई की दौलत खर्च करने की आती है, इस पर भी यही नीति लागू होती है। किसी अच्छे कार्य पर खर्च किया गया है या बुरे काम पर, भले बुरे का विचार करके अगर हम खर्च करेंगे या दुनिया के भले बुरे पर खर्च करेंगे, ये निर्भर करता है खर्च करने वाले की मानसिकता, आचार विचार और दूसरे के बारे में की गई सोच विचार के ऊपर। विचारधारा ही मनुष्य को कहीं का कहीं ले जाती है। क्षण भर में वो धार्मिक होता है, दूसरे क्षण वो भला मानुष होता है, तीसरे क्षण अमानुष होता है। निर्णय अपने विवेक से करना होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा में बहना। यहीं पर मनुष्य के संस्कार उसे रास्ता दिखाते हैं। एक व्यक्ति कमाने विदेश चला गया, कुछ वर्ष पश्चात अपार धन संपत्ति कमाकर लौटा। जब सभी को पता चला तो रिश्तेदार भाई बहन सभी आए, उसका स्वागत किया, दिन भर उसे घेरे रहते, निगाहें सबकी उसके धन पर होती थी, अनेकानेक प्रकार की कहानियां सुनाकर पैसे लेने के प्रयास होते रहते थे। कोई विचार करता कि किस प्रकार से पैसा लिया जाए, कोई कुछ तो कोई कुछ। कई लोग इतना प्यार देने लगे कि पूछो मत। एक बार गांव के ही एक गरीब परिवार का मनुष्य आया, अपनी पुत्री के विवाह का न्योता दिया। उसने कहा, आप मेरी पुत्री के विवाह में अवश्य आइएगा। तब धनी मनुष्य ने सोचा कि मेरे धन को खर्च करने के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है कि वह किसी गरीब कन्या के विवाह में काम आए। उस मनुष्य को शादी में सम्मिलित तो होना ही था, लेकिन उस कन्या के विवाह का खर्च भी उस धनी मनुष्य ने ही उठाया। उसे बहुत अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति हुई। एक समय उसके परिवारजनों की बेरुखी ने किसी दिन उसे घर से बाहर निकाल दिया था। आज वही सब उसके पास आ गए थे, लेकिन ये जो कार्य उससे हो गया था, ये बात उसके भाई बहन को भी अच्छी लगी। धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी उसके पास आए और धन की मांग करने लगे। वो देता गया। अंत में उस मनुष्य को विचार आया कि क्यों ना किसी ऐसी जगह पर धन खर्च किया जाए जिसका लाभ बहुत लंबे समय तक सब लोग उठा सके। एक बात उनके सामने आई कि एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जो संपूर्ण समाज को लाभ दे सकता है, और वो मंदिर माता सरस्वती का मंदिर यानी ज्ञान का मंदिर, जिसमें बगैर किसी भेदभाव के कोई भी मनुष्य आ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, कमाई को खर्च करने का सही मार्ग। वाचन स्वर मुकाम सिंह चौहान के थे।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए खेती की बातें। आज का विषय है बायोगैस। वाचन स्वर तुलसा धरगैया के।
1: किसान भाई नोनी राम राम। आज हम बात करांगा बायोगैस का बारा में। बायोगैस काई होए सबसे पहले तो ई जाना। बायोगैस गैस का रूप में एक स्वच्छ न सस्तो ईंधन है जेका में 55-70% तक ज्वलनशील मीथेन गैस रहे। एको निर्माण पशु न का गोबर सी पाचन क्रिया द्वारा एक विशेष प्रकार का संयंत्र में होज जेका हम गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र कवान। इन्हीं पाचन क्रिया से गोबर की जो उर्वरा शक्ति छे वो कम न हुई कर बढ़ी जाए, लगभग 1.5 गुना हुई जाए। तो बायोगैस हमारे लिए बड़ो उपयोगी भी छे। एक उपयोग छे ईंधन का रूप में कि एक तो खाना पकाने का काम आवत, दूसरो कभी हम बायोगैस से खाना पकाऊंगा तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी होगा क्योंकि कभी लकड़ी न कोयला जलावन तो का धुआं से हमारा स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़े। साथ ही एकासी हमारा घर में हम उजड़ो भी कर सकान। न सबसे बड़ो फायदो ये कि एक ही प्राकृतिक खाद भी बने तो हमारा इतना सारा फायदा छे बायोगैस का। अब हम ये बात करा कि बायोगैस संयंत्र को आकार प्रकार न चयन कसो करा। गोबर की वास्तविक रूप से उपलब्ध मात्रा न गैस की जरूरत का अनुरूप हम संयंत्र की क्षमता को चयन कर सकान। तकनीकी व्यक्ति जो भी कृषि विभाग का जो अधिकारी छे उनका सी जानकारी लेना हम एको संयंत्र स्थापित कर सकान। संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन गैस उत्पादन में कितनी रह कि कितरो गोबर की मात्रा लगज, गोबर का लेना जो आवश्यक वयस्क पशु न की जो अनुमति संख्या रह जो कितनी रह, ये सब जानकारी न हम अपना कृषि विभाग का अधिकारी न से ली सकान। साथ संयंत्र को आकार को चयन करते समय भी हमको ये ध्यान रखनु कि कदी चयनित संयंत्र की आवश्यकता का अनुरूप साल भर गोबर उपलब्ध रहे तो हम स्थिर गुंबद वालों संयंत्र भी लगी सकान। साथ ही भाई बहनों स्थिर गुंबद वाली जो संयंत्र छे ओखा लगाना का लेना हमका कुछ सामग्री जैसे कांका की लगेगा वो भी हम बताई देवा। एक लेना हमका लगेगा ईट लगेगा, सीमेंट लगेगा, 50 किलो बोरी का करीब बोल्डर लगेगा, रेत लगेगा, गिट्टी लगेगा, न GI पाइप लगेगा, सीमेंट को पाइप लगेगा, निकासी टंकी को ढक्कन बनाने के लिए लोहा का सरिया लगेगा, ना पेंट लगेगा। तो ये सब जानकारी ना कभी हम अपना घर स्थिर गुंबद वालों संयंत्र बनाना चाहता हो तो हम कृषि विभाग अधिकारी ने से संपर्क करी न बने सकान। अब बात करा बायोगैस संयंत्र से जो हमका बायो खाद उपलब्ध रहे ओका में पोषक तत्व न की मात्रा कितनी रहे। एका में नत्रजन लगत 1.5-2%, फास्फोरस 1%, न पोटास 1%। तो ये सब हमको एक फायदा रहे। अब बायोगैस का लाभ का बारे में जाना। जो बायोगैस से हमको जो खाद मिले जो हमारी खेती में काम आवे उका भी घना फायदा छे। एक ईंधन का अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र को खाद उत्पादन संयंत्र रूप से हम उपयोग कर सकान। संयंत्र में बहुत कम समय में गोबर अपघटित हुई जाए। बायो खाद का अनेक लाभ छे जेमा बायो खाद एक उत्तम प्रकार की पूर्ण रूप से सड़ेल जैविक खाद रहे। बायो खाद का उपयोग सी जो हमारे जमीन की सेहत रहे वो अच्छी रहे। खेत 2-3 साल तक अधिक उपजाऊ बने रहे जबकि रासायनिक खाद को असर 1 साल तक रहे। बायो खाद का उपयोग सी धरती की जो उर्वरता रहे जो काम नभी अधिक समय तक बने रहे। भूमि की उर्वरता बढ़ाना का लेने काम कई प्रकार का जीवाणु न केचुआपन पर न साथ खेत का अधिक उपजाऊ बनाना में मदद कर। आवश्यक मात्रा एक ही सिंचित भूमि का लेना 10 टन प्रति हेक्टेयर न असंचित भूमि का लेना 5 टन प्रति हेक्टेयर का हिसाब से लगे। अब बायोगैस निर्माण में हमको कुछ सावधानी न भी रखनु पड़े। गोबर गैस संयंत्र को निर्माण काली मिट्टी या पेड़ का पास हमको नहीं करना चाहिए जेका सी संयंत्र में दरार पड़ने की संभावना रहे। काली मिट्टी में गोबर संयंत्र निर्माण से लागत बढ़ी जाए। गोबर गैस संयंत्र को निर्माण खुला स्थान न कड़ी मुरुम वाला स्थान पर करना चाहिए। एक कारण हमको सरकार द्वारा अनुदान भी प्राप्त हो। शासन का मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा 1 घन मीटर पर अनुसूचित जनजाति न अनुसूचित जनजाति का लेना 17,000 रुपया न जो अन्य लोग थे उनका लेना 9,800 रुपया को अनुदान मिले। 2-4 घन मीटर अनुसूचित जनजाति न अनुसूचित जाति का लेना 22,000 रुपया न दूसरी जो जाति ने उनका लेना 14,300 रुपया को अनुदान मिले। शौचालय से जुड़ा जो संयंत्र है उनका पर 1600 रुपया को अनुदान मिले। तो भाई बहनों जो गोबर गैस से हम अपना घर में गोबर गैस बायोगैस लगावा न अपना जीवन का खुशहाल बनावा।
0: खेती की बातें में अभी आपने सुना बायोगैस के बारे में। वाचन स्वर थे तुलसा धरगैया के। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग

लोमश ऋषि के शाप से ब्राह्मण शरीर धारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष, कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। श्रोताओं, आइए अब आपको आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। आज सवेरे 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर, जो केंद्रित है नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विभिन्न टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स से शिखा साहू की बातचीत। सवेरे 8:30 का समय रहेगा फिल्म संगीत का, और 9:00 आप सुन सकते हैं मराठी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मातृ दिवस पर चर्चा के साथ ही आप सुनेंगे मातृ दिवस पर कवि और नाट्यकर्मी संजीव दीघे की वार्ता। इसके साथ ही कीर्तनकार श्रुति भंडारे से बातचीत।

शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा सुबह 9:30। आज हमारे श्रोता सुनेंगे पंडित मणिराम का ख्याल गायन। राग होगा सावेरी तोड़ी। सवेरे 10 बजे सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 10:05 से सुनिएगा हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन करके अपनी फरमाइश के गीत सुन सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा।

सवेरे 11 बजे हमारे भोपाल केंद्र से सुने फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 11:10 पर सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और अब आपको हमारे भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 12:02 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत संग्रहालय से। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। इसके साथ ही

0: दिन में 1 बजे सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। लोक संगीत आप सुनेंगे 1:30 पर और सुगम संगीत का समय रहेगा 1:45। हमारी शाम की सभा की शुरुआत में 5 बजे सुनिएगा युववाणी कार्यक्रम। 5:45 पर सुने फिल्म संगीत। शाम 6 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और 6:30 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। कलाकार होंगी माधवी लाड़ंगे। शाम 6:45 पर हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार दर्शन। शाम 7:20 का समय रहेगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में सुनिएगा नीलेश जोशी का कविता पाठ। साथ ही कार्यक्रम में होंगे कुछ घरेलू टिप्स और घरेलू व्यंजन। आज रात्रि 8 बजे हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से न्यूज रील सुर्खियों में। रात्रि 8:15 से सुने कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। रात्रि 9:15 पर जरूर सुने कार्यक्रम चित्रगीत और 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10 बजे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण होगा और सभा के अंत में यानी रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे पंडित शंभू प्रसाद पंवार का शास्त्रीय गायन। राग होगा चारुकेशी। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्ष पूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्री मोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुंभाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नवन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मंडल दंडाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षी अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा गठबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त विश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमन्त बिश्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पांच मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 11:10 पर सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व में करेंगे कुंभाभिषेक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो में दो मादा चीते किए आजाद। गुना में अडानी समूह की नई सीमेंट इकाई की रखी गई नींव। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने कहा, अब प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे युवा। और प्रदेश में टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में भाग लेंगे। वे भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभाभिषेक करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में एक रोड शो भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइबराबाद देश और दुनिया दोनों के लिए अहम है और तेलंगाना को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जहीराबाद में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। श्री मोदी ने देश हित में लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने और पेट्रोल डीजल का उपयोग संयम के साथ करने की अपील भी की।
1: भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीती थी, जिनमें अकेले भाजपा को 82 सीटें मिली। राज्यपाल कल श्री सरमा और उनकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को क्वारंटीन बाड़े से खुले जंगल में छोड़ेंगे। ये दोनों चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से हैं, जिन्होंने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। इस कदम से प्रोजेक्ट चीता को नई रफ्तार मिलेगी और अब भारत में कुल चीतों की संख्या 57 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गुना में अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। 32 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाली इस फैक्ट्री से 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सालाना 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण

0: सरकार बनाएंगे। ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है, विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है।
1: श्री सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने की कोशिशें तेज हैं ताकि युवाओं की नौकरी के लिए युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। शिवपुरी विकासखंड के ग्राम धुवानी की इंदिरा जाटव भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है, जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर अपनी जिंदगी बदल ली है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता।

0: ये शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के कार्यक्रम में प्रदेश को 830 करोड़ रुपए का आवंटन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है और कोई भी गांव पक्की सड़क से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2055 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश की पहचान है और आत्मनिर्भर एमपी के लिए खादी और ग्रामोद्योग सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुनकर मुद्रा योजना के तहत पिछले 3 साल में 194 बुनकरों को 268 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भोपाल के 27 स्कूलों कॉलेजों के 250 से ज्यादा छात्र शिक्षक भाग लेंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ स्वदेशी तकनीक और विज्ञान की अहमियत पर बच्चों से रूबरू होंगे। इसके साथ ही एक रोबोटिक्स वर्कशॉप भी होगी, जिसमें बच्चे खुद टीमें बनाकर रोबोटिक्स मॉडल तैयार करेंगे। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को आंधी तूफान की वजह से एमपी टूरिज्म का क्रूज डूब गया था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। अब सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया है। ये आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और यह भी बताएगा कि हादसे के वक्त बचाव का काम ठीक से हुआ या नहीं। साथ ही प्रदेश में चलने वाली सभी नावों और क्रूज के लिए नए सेफ्टी नियम भी तय किए जाएंगे। बात मौसम की। प्रदेश में 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से आज मंडला, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 8 जिलों में 30 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम समेत कई जिलों में तेज गर्मी रहेगी। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में यह मिला जुला मौसम अभी कुछ दिन और बना रहेगा। अब बात खेल की। प्रदेश की शूटर नीरू दंडा ने कजाकिस्तान के अल्माटी में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में विवान कपूर के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता है। नीरू राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने नीरू को बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल है। रायपुर में कल रात खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए, जिसमें तिलक वर्मा ने 42 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली। बेंगलुरु ने 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया और भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। वहीं आज धर्मशाला में 7:30 बजे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के गौरीघाट पर 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संपन्न। होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों ने किया अभ्यास। बैतूल के नंदावन धन विकास केंद्र में आज न्यूजीलैंड का प्रतिनिधिमंडल करेगा भ्रमण। मधु संग्रहण और जनजातीय आजीविका गतिविधियों का लेगा जायजा। रतलाम टिकट चेकिंग टीम ने 3 करोड़ 41 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में बनाया नया रिकॉर्ड। बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम का 2रा चरण पूरा। 4 जंगली भैंसे विशेष बाड़े में किए गए मुक्त। डिंडोरी में आरोह ग्रीष्मकालीन कैंप के तहत मां नर्मदा तट पर विशेष संडे एक्टिविटी का आयोजन हुआ। और पन्ना जिला चिकित्सालय में 4 से 10 मई तक चले अग्नि सुरक्षा सप्ताह में मरीजों, परिजनों और अस्पताल स्टाफ को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर।

गुड मॉर्निंग इंदौर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग इंदौर सुनने वाले सभी श्रोताओं को शिखा का नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन हम सभी के लिए बेहद गर्व का दिन है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। यह दिन उन सपनों, खोजों और विचारों का उत्सव है श्रोताओं, जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्रोताओं, इस दिन की शुरुआत वर्ष 1998 से जुड़ी है। आज ही के दिन सन 1998 में भारत में राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किए गए थे। ये परीक्षण भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने किए थे, और इसी दिन भारत ने अपना पहला स्वदेशी मिसाइल त्रिशूल लॉन्च किया था। और श्रोताओं, इसी दिन यानी 11 मई 1998 को भारत ने देश में ही निर्मित अपने पहले विमान हंसा 3 का सफल परीक्षण किया था। इन सफलताओं की याद में ही श्रोताओं, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित किया था। आयो रे शुभ दिन आयो। यह दिन प्रतीक है श्रोताओं हमारे देश की वैज्ञानिक सोच, नवाचार और आत्मनिर्भरता का। और श्रोताओं, जब सोच का आधार ही वैज्ञानिक हो तो देश में डिजिटल क्रांति तो आनी ही थी। आज भारत डिजिटल क्रांति के उस दौर में है, जहां गांव का किसान मोबाइल से मौसम देख रहा है और एक छात्र घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। महिलाएं तकनीक के सहारे आत्मनिर्भर बन रही है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में हम बातें करेंगे तकनीक की, भविष्य की और उन संभावनाओं की जो आने वाले भारत की तस्वीर बदल रही है। तो चलिए आगाज करते हैं ज्ञान, नवाचार और प्रेरणा से भरे आज के सफर का, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर का, इस गाने के बाद।

चूंकि बात आज पोखरण परमाणु कार्यक्रम की हुई है, तो इसी विषय पर एक बहुत सुंदर एक सुपरहिट फिल्म आई थी परमाणु, तो ये गाना उसी फिल्म से।

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर, और आज की सुबह बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक केवल मशीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सपनों, हमारी तरक्की और हमारे भविष्य की उड़ान है। कभी चिट्ठियों से शुरू हुआ सफर आज वीडियो कॉल तक पहुंच चुका है, कभी घंटों लगने वाला काम अब कुछ सेकंड्स में हो जाता है, और यह संभव हुआ है उस तकनीक से, तकनीक की उस शक्ति से जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज गांव से लेकर शहर तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हर क्षेत्र में तकनीक नई उम्मीदें जगा रही है, और इन्हीं बदलावों को समझने, जानने और महसूस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक विशेष अतिथि, एक ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने काम और सोच से तकनीक को समाज से जोड़ने का प्रयास किया है। तो बहुत सारी मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। हमारे साथ है श्रोताओं, पंकज शर्मा जी। आपको बता दूं कि पंकज जी एक मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगभग 20 सालों से। तो पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग।
1: धन्यवाद, धन्यवाद शिखा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। डेफिनेटली वी विल टॉक लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस।
0: जी बिल्कुल, आज तो बातें करनी बनती है क्योंकि आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे और आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले तो पंकज जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आज ऐसी कौन सी तकनीक है जो दुनिया को तेजी से बदल रही है, या हम जो कहें कि सबसे ज्यादा काम में आ रही है।
1: देखिए शिखा जी, आजकल जो चीज है वो है AI। मतलब आज अगर हम बात करते हैं कि तकनीक के बारे में, तो AI एक ऐसी चीज है जो दुनिया में काफी कुछ बदल रही है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बट अगर आप आज मेडिकल साइंस देखोगे या कोई भी चीज देखते हो, आप हर जगह आपको AI का इम्प्लीमेंटेशन दिखता है।
0: जी जी जी बिल्कुल। अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें पंकज जी, तो ऐसे मैं कुछ चेंजेस जानना चाहूंगी जो पिछले 10 वर्षों में टेक्नोलॉजी की वजह से हुए हैं।
1: शिखा जी, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जिसके थ्रू शायद श्रोताओं को भी चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी कि कैसे होता है। आज से 10-20 साल पहले की अगर अपन बात करें, कोई बंदा है जो US गया हुआ है
0: जी,
1: तो उसकी फैमिली तब तक इंतजार कर रही है जब तक वो आ नहीं जाएगा, उसे वो देखने को नहीं मिलता था। बट ये मेरे साथ में हुआ है कि आज से 10 साल पहले जब मैं US गया हुआ था, तो ऐसा लगा ही नहीं था कि हम US में हैं और हमारी फैमिली इंडिया में है। वो जो हमारा कॉलिंग चल रहा है और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कनेक्ट हैं, तो हमें लगता है कि हमारी फैमिली हमारे साथ में ही खड़ी हुई है
0: जी। बिल्कुल।
1: तो ये एक बहुत बड़ा चेंज IT के अंदर आया हुआ है, जिसमें उसने पूरी दुनिया को एक छोटे से फॉर्मेट में लेके आ गए।
0: जी बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि AI की वजह से दूरियां कम हुई हैं।
1: AI तो अभी आया, बट हाँ AI
0: टेक्नोलॉजी की वजह से,
1: जी हाँ टेक्नोलॉजी की वजह से दूरियां कम हो गई हैं, और AI की वजह से तो मतलब दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है, ये कह सकते हैं।
0: बिल्कुल। अगर हम आने वाले 10 सालों की बात करें, तो हम कहां देखते हैं इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन बदलावों पर काम चल रहा है?
1: ओके, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी थोड़े समय पहले एक इंडिया में AI समिट की हुई थी, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो AI एक ऐसी चीज है जो आगे अगले 10-15 सालों तक अब इसी में काम होने वाला है। अभी तक हम लोग ये देखते थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता था वो एक ह्यूमन माइंड से, आप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ बिजनेस को समझ के आप उसका सॉल्यूशन तैयार करते थे। बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आपने भी देखा होगा जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में थे, उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में हम सिर्फ सुनते थे कि ऐसा कुछ है,
0: एक बहुत छोटा सा चैप्टर हुआ करता था हमारे कंप्यूटर की किताबों में,
1: और वो चीजें ऐसे लगती थी कि ये इमेजिनेशन है सर।
0: जी बिल्कुल।
1: बट आज के टाइम पे अपन देखते हैं कि वो AI एग्जिस्टेंस में अभी है,
0: और
1: वो वही आगे होने वाला है, वही सारी चीजें आगे चलने वाली हैं।
0: जी,
1: तो AI मतलब AI इज समथिंग जो अब आगे रहने वाला है, और बच्चों को भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी सॉफ्टवेयर बनाने की, सीखने की, करने की, अब उससे आगे बढ़ के हमें AI कैसे काम करता है इस चीज को समझना जरूरी है, और इसी चीज पे मोदी जी ने भी काफी फोकस किया हुआ है।
0: जी पंकज जी, वैसे तो ये सवाल मुझे आपसे सबसे पहले करना चाहिए था, पर मैं बीच में कर रही हूँ कि आप अपनी कंपनी में किस तरह का काम कर रहे हैं?
1: वैसे मेरा जो डेजिग्नेशन है वो सीनियर टेक्निकल मैनेजर हूँ मैं, और हमारा काम होता है कि हम जो भी नए बंदे ज्वाइन करते हैं कंपनी में, हम उन्हें कंपनी में क्लाइंट के हिसाब से हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जो
0: जी
1: क्लाइंट की टेक्नोलॉजी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम बंदे तैयार करते हैं, और वो बंदे फिर आगे जाके क्लाइंट एंड पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो
0: जी
1: ये
0: जी
1: बेसिकली हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती
0: जी
1: है।
0: जी यानी आप अपनी कंपनी के टेक्नो ट्रेनर हैं।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल लोग चाहते हैं कि वो ऐसे जॉब्स से अलग कुछ अपना कुछ करें, तो अगर जैसे किसी में किसी किस्म का कोई आर्ट से जुड़ा हुआ है, कोई किसी घर पे भी आजकल लोग बहुत सारे काम करते हैं, किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए वो कपड़ा व्यवसाय घर से कर रहा है, आजकल महिलाएं बहुत सारे व्यवसाय कर रही हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो टेक्नोलॉजी उनकी किस तरह से मदद कर सकती है?
1: तो शिखा जी, इसमें एक एक एंगल मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक म्यूजिशियन है, वो अपने लिए पूरी एक वेबसाइट तैयार करवा सकता है और उस वेबसाइट से अपना एक बिजनेस भी बना सकता है।
0: जी
1: तो पहले एक ये था कि यार हमें बिजनेस बनाने के लिए या लोगों तक पहुंचने के लिए काफी एफर्ट्स लगाने होते थे, बट आज वही सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ी आसान हो गई हैं। और जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल लिया हुआ था कि काफी महिलाएं हैं जो घर से काम कर रही हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि एक लेडी हैं और वो कपड़े का व्यवसाय करती हैं, बट उनको अगर एक्सपैंड करना है, जैसे आज वो भोपाल में या इंदौर में कहीं पर काम कर रही हैं, अब इन शहरों से हटके और दूसरी जगह पे उनको ऑर्डर प्लेस करवाने लेने,
0: जी
1: तो वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हो और वहां से आप पेमेंट घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं।
0: और मुझे लगता है कि अगर कोई ग्राहक वेबसाइट के थ्रू किसी व्यक्ति से जुड़ता है, तो एक विश्वसनीयता वाला जो सवाल है, उसके मामले में वो अपने आप को संतुष्ट पाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वेबसाइट्स जो हैं वो एक तरीके से विंडो शॉपिंग ही है। आप 20 25 50 प्रोडक्ट्स आप देखते हो, रेटिंग आप उसकी चेक करते हो, और उस तो आप वो देखने के बाद में कोई चीज खरीदते हो तो देयर आर चांसेस कि आप गलत चीज नहीं मिलेगी आपको।
0: जी
1: तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हैं, जिनको मतलब लोग बाग कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़
0: जी
1: भी सकते हैं।
0: तो मुझे लगता है बातें करते करते टेक्नोलॉजी का ये दूसरा फायदा हमारे सामने आ गया, कि पहला था कि दूरियां कम हुई हैं,
1: बिल्कुल
0: दूसरा
1: बिल्कुल
0: यह है कि विश्वसनीयता बढ़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बात हम एआई की करते हैं कि एआई के आने से हम काफी ज्यादा उस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। बहुत
1: बिल्कुल।
0: से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो अपने पर्सनल एआई असिस्टेंट उपलब्ध कराते हैं,
1: जी हाँ।
0: तो ये अच्छा संकेत है उस पर निर्भरता, या फिर कुछ चिंता का विषय है आगे भविष्य के लिहाज से बात करें तो?
1: देखिए, दोनों चीजें हैं, मतलब अच्छा भी है और चिंता भी है। मैं दोनों को एक एक करके मैं क्लेरिफाई
0: समझाएं।
1: करता हूं
0: जी
1: ताकि समझ में आएगी चीजें। अच्छा ऐसा होगा कि अगर आज हमारे को कोई चीज आसानी से उपलब्ध हो रही है और उसको हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे संकेत होंगे। एआई को बोला जाता है को पायलट। को पायलट का मतलब ये होता है, जैसे प्लेन में जब एक पायलट होता है तो वो प्लेन को चलाने का काम कर रहा है, पर को पायलट जो होता है वो उसको असिस्ट करता है।
0: जी
1: अगर हम उसको मेन पायलट बना देंगे तो चांसेस ये हो सकते हैं कि प्लेन क्रैश हो जाएगा।
0: जी
1: तो जो एक शब्द आता है एआई के अंदर को पायलट, उसको इसीलिए बोला जाता है कि वो आपका एज ए टूल है,
0: जी
1: बट अगर आप उसको एज ए मेन पायलट यूज करने लगोगे तो वो डिसरप्शंस क्रिएट करेगा। आज कोडर्स क्या कर रहे हैं मैम, कि उनको अगर कोई भी एक रिक्वायरमेंट दी जाती है बनाने के लिए, काम करने के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट को सीधा एआई को देते हैं, एआई कोड जनरेट करता है और वो उसको प्रोडक्शन में डाल देते हैं।
0: जी
1: ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी एक रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं उसके पीछे एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो एआई कैन क्रिएट द ब्लंडर्स इन नियर फ्यूचर। क्योंकि आप एआई का कोई सा भी टूल ले लो, आप चैट जीपीटी लो या आप कोई सा भी टूल ले लो, एआई में खुद एआई ने लिख के दिया हुआ है कि जो मैं आपको क्रिएट करके दे रहा हूं यू विल हैव टू रिव्यू इट फर्स्ट।
0: रिव्यू इट फर्स्ट।
1: अगर
0: जी
1: आप इसको रिव्यू नहीं करते हो तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।
0: रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल। कभी कभी उसमें ये होता है कि गलत जानकारियां भी हमें मिल जाती
1: करेक्ट।
0: है।
1: तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो जो डेवलपर है ही विल बी बेसिकली अकाउंटेबल फॉर मेकिंग एनी लॉसेस।
0: जी
1: एआई लॉस को अकाउंटेबल नहीं करेगा, आप ह्यूमन हो, ह्यूमन को अकाउंटेबिलिटी
0: जी
1: लेना पड़ेगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि एआई आपके लिए अच्छा
0: को
1: भी है,
0: पायलट है और उसे को पायलट ही
1: को
0: रहने
1: पायलट
0: दिया
1: जैसा ही
0: जाए।
1: यूज
0: जी
1: करना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: उसको एज ए टूल ही यूज करना चाहिए
0: जी,
1: हमें।
0: अपनी सोच और अपनी समझदारी के साथ अगर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित ही हम इसके फायदे जो है वो बढ़ा
1: बिल्कुल
0: पाएंगे और
1: बिल्कुल
0: अपना जीवन आगे सरल बना
1: करेक्ट,
0: पाएंगे।
1: क्योंकि एआई को भी ह्यूमन नहीं बनाया है।
0: जी बिल्कुल। मैं चलते चलते पंकज जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए वो क्या करें, बता दीजिए।
1: सिंपल सी चीज है मैम, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ब्लाइंडली कहीं पे भी शेयर ना करें।
0: जी
1: आज अगर आप किसी भी लोकेशन पे जाते हो और वहां जाके आप फोटोज अगर आप डाल देते हो तो पीछे तो लोगों को मालूम है कि आपके घर पे कोई नहीं है।
0: कोई नहीं है जी।
1: सो माय सजेशन इज कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितना कम से कम हो सकता है वो आप शेयर करें।
0: ना बहुत अच्छा लगा पंकज जी आपसे बात करके, और आप लोगों से इस तरह की जब बात होती है ना तो हमें एक आशा जागती है, एक उम्मीद जागती है कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। और प्रधानमंत्री जी का विजन 2000

0: 47 के जो भारत का सपना है उसे हम निश्चित ही पूरा कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। पंकज जी, हमारे कार्यक्रम की रवायत है कि हमारे साथ जो मेहमान हमारे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में आते हैं, हम उनकी पसंद का कोई गीत जो है वो हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, आज हम आपकी तरफ से कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवाएं?
1: आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द बोला था, चलते चलते, बस
0: जी
1: वही गाना आप सुनवा दीजिए।
0: बहुत सुंदर गाना है, तो लीजिए सुनते हैं हमारे श्रोताओं के साथ की पसंद का ये खूबसूरत सा गाना, और एक बार सभी को साथ में मिलके कह देते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर अपनी दोस्त शिखा के साथ। जब नई सोच तकनीक से हाथ मिलाती है तब विकास की नई इबारत लिखी जाती है और भारत विकास के पथ पर अग्रसर है अपने टेक्नोफ्रीक युवाओं के साथ। हमारे युवा टेक्नोलॉजी को अपनी शिक्षा, अपने करियर में किस तरह से इस्तेमाल करें, तकनीक को अवसर में कैसे बदलें, इस विषय पर आइए बात करते हैं दीपक सिंह सर से। आपको बता दूं श्रोताओं कि दीपक जी एक आईटी एक्सपर्ट और करियर काउंसलर है। तो दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग।
1: थैंक यू सो मच शिखा मैम। गुड मॉर्निंग
0: जी। दीपक जी, टेक्नोलॉजी जो है ना, हमेशा से ही युवाओं का पसंदीदा विषय रहा है। अगर वो टेक्नोलॉजी में डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनके पास करियर के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं?
1: जब हम करियर की बात करते हैं तो दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसका इंटरेस्ट, दूसरा डिमांड क्या है फ्यूचर की, आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या चीजें बदलने वाले, कितना फास्ट मूविंग ट्रेंड बदल रहा है। आज आपने देखा होगा आज के डेट में सभी जो किस भीड़ की चाल में भाग रहे हैं कि लोग वो कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ना कि जिसमें ट्रेंड ज्यादा है, जहां डिमांड ज्यादा है। पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड ओनली फाइंडिंग आउट द ट्रेंडिंग कोर्स, नॉट इंटरेस्टिंग कोर्स। तो हमें पहले तो वो कोर्स फाइंड आउट करना है जिसमें इंटरेस्ट हो, उसके बाद अपने करियर को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाना है जहां पर हम पहुंचा सकते हैं
0: जी।
1: अब अगर मैं डिमांड की बात करूं, डिमांडिंग कोर्सेज क्या है, जैसे कि आज के समय साइबर सिक्योरिटी, साइबर साइकोलॉजी। आज के डेट में अगर साइबर सिक्योरिटी है तो उससे पहले क्या एक सोच होनी चाहिए होती है किसी भी क्राइम को करने के लिए, वो समझना बहुत जरूरी है। तो साइबर साइकोलॉजी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, ये सारे हाईली डिमांडिंग कोर्सेज आज के समय में हो रहे हैं और जो कि हर बच्चा, हर युवा किसी भी देश के कोने में बैठ के बहुत आसानी से ये इस तरह के कोर्सेज को कंप्लीट कर सकता है।
0: जी जी जी। तो अगर युवा जो है, जो हमें इस वक्त बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनमें से कोई टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी होगी?
1: शुरुआत करनी होगी सबसे पहले टू आइडेंटिफाई हिज इंटरेस्ट एंड स्किल्स। उसका इंटरेस्ट किस में है, कौन से सेक्टर में उसे अपना इंटरेस्ट बनाना चाहिए और उस इंटरेस्ट के हिसाब से कौन से टेक्नोलॉजी डिमांड में वो अपने लाइफ में यूज कर सकते। अगर मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, जनरली ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि AI टेक्नोलॉजी उन बच्चों के लिए जो टेक्निकली है, पर उन बच्चों का क्या जो नॉन टेक्निकल है, चाहे अगर BA की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, BCOM की बात करें, BBA की बात करें, क्या ये सारे कोर्सेज आउटडेटेड हो जाने वाले हैं? सवाल तो ये सबसे बड़ा है। पर आने वाले 10 सालों में ये सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है, वो ये है कि BBA इंक्लूड करेगा हर सब्जेक्ट्स में। कैसे आप बिजनेस विथ AI कर सकते हैं, सप्लाई चेन इन AI कैसे कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा। इसलिए आज के श्रोताओं को मेरा ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, एक ऐसी टेक्निकल स्किल जरूर गेन करें जो AI से रिलेटेड हो और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो।
0: जी, यानी आपका कहना है कि आगे हर क्षेत्र जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और बेहतर काम करेंगे।
1: बेहतर काम।
0: तो कुछ ऐसे क्षेत्र जो है उनके बारे में हमारे सुनने वालों को बता दीजिए।
1: जैसे मैं आज की बात करूं एग्रीकल्चर
0: जी,
1: जो कि आज काफी डिमांडिंग में है और हमारा देश 70% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आज हर किसान जो है अपने हार्वेस्टिंग हाथों से करता है, ट्रक से करता है और कई समय तक इंतजार करता है, कई समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर एक रोबोटिक के माध्यम से, एक रोबोट मशीन के माध्यम से, AI के माध्यम से वो सारे काम विद इन आवर, वो सारे हार्वेस्टिंग, वो सारे प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है विदाउट एनी लेबर। तो एक इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट से वो बहुत बड़े लेवल पे, स्केल लेवल पे वो आसानी से काम कर सकता है एग्रीकल्चर में।
0: तो AI पर, टेक्निक्स पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना, क्या ये अच्छे संकेत है या फिर चिंता का विषय है, क्या बोलेंगे आप?
1: जी बिल्कुल, ये अच्छे संकेत है क्योंकि अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी का ग्रोथ को देखना है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे चल रही है और हम भी उस रेस में हैं। आज अगर हम इस चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली युवा के साथ साथ देश भी पीछे रह जाएगा।
0: तो यदि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड होते हैं तो आने वाले समय में ऐसा तो नहीं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी?
1: जी नहीं, बिल्कुल ऐसा मेरा ऐसा ओपिनियन है कि टेक्नोलॉजी किसी की जॉब चली जाए ये इससे रिलेवेंस नहीं है। बेटर देन हम इस दिशा में सोचें कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को फ्रेंडली अडेप्ट कर सकते हैं
0: जी,
1: रेदर देन इस दिशा में सोचने की कैसे जॉब चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको बात करूं, आज एस्ट्रोलॉजी का काफी स्कोप है, हर व्यक्ति को अपना भविष्य देखने का मन होता है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? सिंपल सी चीज है, आपके अपने पाम के फोटोज क्लिक करनी है और एआई में पोस्ट करना है और राइट करना है कि प्लीज टेल मी माय फ्यूचर व्हाइल रीडिंग माय पाम, दैट्स इट। वो अपने घर बैठे सारी चीजें अपने भविष्य के बारे में जान सकता है, अपने इंटरेस्ट को देख सकता है। तो ये भी एक आज काफी ट्रेंडिंग एप्स हैं। इवन सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आज आपके बात करूं हेल्थ केयर सेक्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक जेनेटिक साइंस एआई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारे देश में, बहुत कम जगह, काफी कम इंस्टीट्यूट में है, बट वर्ल्ड इसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है। आज आपके बच्चे को, पेरेंट्स को नहीं पता कि मेरा बच्चा एक एथलीट बनेगा कि नहीं बनेगा, पर वो जेनेटिक साइंस आपको पहले ही बता देगा कि उसका भविष्य किस सेक्टर में जाएगा।
0: क्या बात है जी, यानी बहुत सारी जो संभावनाएं हैं वो हर विषय में और हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। अगर हम छोटे शहरों की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की, तो अगर कोई वहाँ का स्टूडेंट, वहाँ का युवा एआई में, टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? क्या उसे इस बात से डरना चाहिए कि उसे अपना गाँव या फिर शहर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा?
1: बिल्कुल नहीं, एआई ने यही तो सबसे आसान किया है, हर इंसान की जिंदगी को बहुत आसान करता है। आज एक गांव में बैठा युवा बैठकर एक छोटा सा रील बना के वायरल हो जाता है
0: जी,
1: ये सोशल मीडिया का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। सो ही डोंट नीड टू गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड, वो जहां बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस देश के कोने में बैठा है, वहां से बैठ के अपने करियर का निर्माण कर सकता है
0: जी। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत और यही है टेक्नोलॉजी की सोच, जिससे निश्चित ही हमारा देश जो है विजन 2047 को पूरा कर पाएगा। बहुत अच्छा लगा दीपक जी मुझे आपसे बात करके, और आपकी बातों से ये आशा हम सभी में जागती है कि टेक्नोलॉजी भविष्य को बहुत बेहतर बना सकती है। हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे आपकी पसंद का कोई एक बड़ा खूबसूरत सा गाना, जो आज हम आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनाए और उनकी सुबह को खूबसूरत बनाए, तो कोई एक प्यारा सा गीत बताइए।
1: क्योंकि आज हमने काफी मोटिवेशनल बातें की हैं, तो उससे रिलेटेड ही सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे, जो कि है कर हर मैदान फतेह।
0: जी, फिल्म संजू का ये गाना है और बिल्कुल आपकी बातों से ये इत्तेफाक रखता है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना हमारे श्रोताओं के साथ, और सभी को एक बार साथ में मिलके कह देते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर। पिघला

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर और बात हो रही है नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। श्रोताओं, तकनीक केवल मशीनों तक सीमित नहीं रही बल्कि महिलाओं की पहचान, आत्मनिर्भरता और सफलता का नया माध्यम बन चुकी है। आज महिलाएं कोडिंग से लेकर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है और इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही है एक महिला टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जिन्होंने अपने ज्ञान, मेहनत और अपनी सोच के दम पर तकनीक की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उनकी ये जो यात्रा है हजारों युवतियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सपने तो देखती हैं लेकिन शुरुआत करने से हिचकिचाती हैं। तो श्रोताओं, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में हर्षा पारवानी चौहान जी का। तो हर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, थैंक यू।
0: हर्षा जी, बताइए, टेक्नोलॉजी डे हम मना रहे हैं और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो महिलाएं भी आज इस क्षेत्र में कहीं पीछे नहीं है। आप खुद एक बड़ा उदाहरण है, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मैं पिछले 20 साल से मीडिया से जुड़ी हुई हूँ और मीडिया के सभी एस्पेक्ट्स में काम कर रही हूँ, थिएटर ब्रांडिंग, ऑटो ब्रांडिंग, बस ब्रांडिंग, इन सब में टेक्नोलॉजी लगती है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैक्सिमम जो भी काम होता है। अब हम काफी हद तक एआई पर शिफ्ट हो चुके हैं, तो एआई इज अ बिग पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर तरह की ब्रांडिंग में टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम हिस्सा है।
0: जी जी, हर्षा जी, इस तरह की बातें जब हम किसी महिला से सुनते हैं ना तो बड़ी खुशी मिलती है। इस वक्त आपको जो महिलाएं सुन रही हैं कार्यक्रम के माध्यम से, आप उन्हें क्या सलाह देंगी कि वो किस तरह से शुरुआत करें ताकि वो टेक्नोलॉजी और एआई और सोशल मीडिया के जिस तरह के आप प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है वो उनसे जुड़ सके और अपना करियर जो है वो डिसाइड सके?
1: आज की तारीख में आप अगर अपना ब्रश, हेयर कॉम्ब चूज करती हैं वहां से लेकर आप अपना शू चूज करती हैं वहां तक, अपने मेकअप्स चूज करती हैं टेक्नोलॉजी वाले, अपने फिटनेस इक्विपमेंट्स चूज करती हैं विद टेक्नोलॉजी, और इसी टेक्नोलॉजी को वो आज उनसे कमा रही हैं, अर्न कर रही हैं एंड अपने वेरियस करियर्स में अपने आप को बहुत आगे लेकर जा रही हैं। सो आई थिंक आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट चूज करना है। आप बहुत बड़ी महिला हैं, तरला दलाल, उन्होंने फूड को लेकर, किचन को लेकर तरला दलाल जी ने अपना बहुत बड़ा नाम किया। आप अगर फिटनेस फ्रीक हैं तो आप फिटनेस के वीडियोज के जरिए आप आगे बढ़ सकती हैं। आप किसी बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उस बिजनेस को घर से स्टार्ट करके टेक्नोलॉजी के जरिए आप पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। आप अगर गाती हैं तो अपने आवाज के थ्रू आप बहुत आगे बढ़ सकती हैं। आप सिर्फ सोचिए आप क्या करना चाहती हैं और टेक्नोलॉजी आपको कहां से कहां ले जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। टेक्नोलॉजी में सिर्फ इतना है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, कुछ करते रहिए और बहुत जल्दी आपको बहुत बहुत बहुत सक्सेस मिल सकता है।
0: जब मुझे पता चला था ना कि मैं बात करने वाली हूँ हर्षा जी से, तो मैंने एक प्रश्न ये बनाया था कि ये जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है क्या महिलाओं के लिए कठिन है, लेकिन अभी जिस तरह से आपने मुझे अपनी बातों में बताया कि पहले ही महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़कर काफी अच्छा काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कठिनता बची है, कुछ चुनौतियां बची
1: नहीं, मुझे नहीं लगता। बहुत ईजी है टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना। अडेप्ट आपकी रोजमर्रा की जीवन में ही टेक्नोलॉजी आपके अंदर समाई हुई है। टेक्नोलॉजी टीवी से लेकर, फोन से लेकर, हर चीज में टेक्नोलॉजी। आज खाने बनाने के लिए इतने इक्विपमेंट्स आ गए हैं उसमें टेक्नोलॉजी है। सो टेक्नोलॉजी तो हर कहीं पर है, हर कहीं पर। बिना टेक्नोलॉजी के मुझे नहीं लगता कि किसी का भी अब सर्वाइवल है।
0: अगर कोई महिला घर से काम करना चाहती है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से मददगार हो सकता है?
1: आपको सिर्फ अपना प्लान बताना है एआई को और एआई आपको एक पूरा प्लान बनाकर दे देगी कि आपको अगर एक अचार का बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको एक फिटनेस का बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको एक क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना है या आप कुछ गाती हैं या आप किसी भी वेरिड फील्ड में जाना चाहती हैं, आप कोई भी चीज सोचें, सिर्फ एआई को बताएं कि मेरा ये फील्ड है, मैं इसमें दुनिया को अपना टैलेंट दिखाना चाहती हूँ और मेरा अगला टारगेट है कि मैं 2 साल में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करूँ। AI आपको पूरा एक प्लान बनाकर दे देगा,
0: जी
1: इन डेप्थ प्लान बनाकर देगा कि आप इस स्टेज पर ये करें, इससे आगे आप ये कर पाएंगी, तब आप ये अर्न कर पाएंगी, आप कितने फेजेस में क्या क्या करें. AI आपको एक पूरा प्लान
0: प्लान बना
1: स्ट्रक्चर दे
0: के दे
1: देगा
0: देगा. जी
1: कि
0: जी
1: आप आगे कैसे बढ़ेंगी, और आप अगर उस प्लान पर चली तो 100% आप अचीव भी कर लेंगे उस प्लान को.
0: अच्छा, हमेशा से ही ना महिलाएं एक अपना साथी ऐसा चाहती हैं जिसे वो अपनी सारी बातें बताए और उससे वो अपनी सारी परेशानियों का हल पूछ ले. तो मुझे लगता है टेक्निक और AI जो है वो इस तरह का साथी बना है आज के दौर में
1: बिल्कुल
0: महिलाओं
1: बिल्कुल
0: का.
1: बिल्कुल 100%.
0: जी, अब बात करते हैं सुरक्षा की. डिजिटल दुनिया को हम वैसे तो बहुत उपयोगी मानते हैं, पर अगर हमने थोड़ी सी भी चूक की तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. और अगर महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: मुझे लगता है सुरक्षित रहने के लिए महिलाएं आजकल बहुत सहज हैं, बहुत समझदार हो गई हैं. कुछ अपनी पर्सनल पिक्स अपलोड ना करें, सोशल मीडिया पर अपने शेड्यूल्स ना डालें. सोशल मीडिया के ज़रिए सबको अपना रेगुलर जो आपका रूटीन है वो डिस्क्लोज़ ना करें.
0: जी
1: अपने ऑब्वियसली OTPs ना बताएं किसी को. तो महिलाएं आजकल मुझे लगता है कि बहुत सजग हैं इस चीज़ को लेकर. एंड सिर्फ एक एक बहुत ज़रूरी बात है महिलाओं के लिए कि महिलाएं थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो लोगों के बहकावे में कभी कभार आ जाती हैं.
0: जी
1: तो उन्हें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि वे बिल्कुल भी किसी बात सब सब चीज़ों को प्रैक्टिकली तोल कर मोल कर फिर ही बात करें, क्योंकि ज़माना आजकल इसी चीज़ का है. टेक्नोलॉजिकली लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, और आपके सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर कर भी आपके पासवर्ड्स और ये सब जाना जा सकता है.
0: जी
1: सो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लेकर आप सजग रहिए, और बस फिर दुनिया आपके कदमों में है.
0: जी बिल्कुल. बहुत अच्छा लगा हर्षा जी मुझे आपसे बात करके. और निश्चित ही अगर हम थोड़ी सी सावधानियों का ध्यान रख ले तो सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और AI जो है हमारी राह को, भविष्य की राह को आसान बनाता है. तो हर्षा जी, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी आपकी पसंद का कोई एक बड़ा प्यारा सा गीत जो आज हम आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवाएं, तो एक गीत बताइए.
1: मुझे तो एक्चुअली दो गीत सुनने थे, पर आप एक ही गीत सुनाएंगी शायद मुझे. पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक आज प्ले कर दीजिएगा, एक कल प्ले कर दीजिएगा, क्योंकि
0: जी
1: आकाशवाणी वो हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग सुनते रहते हैं. तो आज कल दोनों दिन सुन लेंगे हम लोग.
0: जी जी
1: तो एक एक सुना
0: बिल्कुल.
1: दीजिएगा, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, और दूसरा गाना आप कभी भी प्ले कर दीजिएगा, पतझड़ सावन बसंत बहार. मुझे
0: जी
1: दोनों ही
0: जी
1: गाने बहुत पसंद हैं.
0: जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है दोनों गाने. पर ठीक है, आज मैं आपको एक गाना सुनवाती हूँ, इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा. बहुत
1: थैंक
0: सुंदर
1: यू
0: गाना है
1: बहुत सुंदर है.
0: और पतझड़ सावन बसंत बहार ये तो आप हमेशा हमारे रेडियो सेट पे सुनती ही रहती है. तो इसके बाद जब भी ये गीत बजे तो आप समझ जाइएगा कि आपके लिए बज रहा है.
1: थैंक यू
0: तो
1: थैंक यू.
0: बहुत अच्छा लगा हर्षा जी मुझे आपसे बात करके. चलिए एक बार सभी को साथ में मिलके कह देते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर.
1: गुड मॉर्निंग.

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, कहाँ, यही आपके मनपसंद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में। अभी इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिखा को, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: अरे वाह
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
4: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
0: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
7: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
8: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
9: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
8: सेमीफाइनल में कलियश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत, हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नम्बर है 0112-3104-81 और 0112-3717106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों अब बात करते हैं वर्ष 2013 में आई फिल्म क्रिश की। ये फिल्म भारतीय सुपर हीरो शैली की प्रमुख फिल्मों में गिनी जाती है। इसमें आधुनिक कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजिटल एक्शन दृश्य और विजुअल इफेक्ट्स का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया था। इसमें हीरो की जो उड़ान है, उसका शक्ति प्रदर्शन और काल्पनिक पात्रों को तकनीक द्वारा प्रभावशाली बनाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया था। बच्चों और युवाओं में ये फिल्म बहुत ही लोकप्रिय साबित हुई और तकनीकी दृष्टि से भी ये एक सफल प्रयास था। तो आइए सुने क्रिश फिल्म का ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, अब बात करते हैं साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान की। इस फिल्म का मशहूर गीत सेल्फी ले ले रे उसी साल दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। पहले के समय में लोग फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो जाते थे, कैमरा रोल धुलवाते थे और कई दिनों बाद हमें फिर तस्वीर मिलती थी। लेकिन आज स्मार्टफोन की वजह से एक क्लिक में सारे फोटो तैयार हो जाते हैं। जहां पुराने दौर में यादें एल्बम में सस्ती थी, वही आज यादें मोबाइल गैलरी और सोशल मीडिया पर दिखती हैं। अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, ये गीत सीधे तौर पर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी और सेल्फी कल्चर से जुड़ा हुआ है। जब मोबाइल फोन में फ्रंट कैमरा आया, तब लोगों में सेल्फी लेने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा। इस गीत में उसी नई आदत और आधुनिक दौर की झलक दिखाई देती है।

दोस्तों अब बात करते हैं वर्ष 2013 में आई फिल्म धूम 3 की। इसमें मुख्य अभिनेता आमिर खान थे जो डबल रोल में थे, उनके साथ थी कैटरीना कैफ। इस फिल्म में तेज गति वाले दृश्य, स्टंट तकनीक और आधुनिक कैमरों का उपयोग हुआ था। 3D प्रारूप में भी इसे प्रदर्शित किया गया जो इसकी विशेषता रही। सर्कस आधारित दृश्यों में प्रकाश, मंच और डिजिटल संपादन का शानदार मेल दिखाई दिया, साथ ही रोमांचक एक्शन दृश्य दर्शकों को आकर्षित करे। ये फिल्म तकनीकी भव्यता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो गीत अपने विशाल सर्कस मंच और भव्य प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है। हवाई कैमरे, ऊंचे सेट और CGI तकनीक का उत्कृष्ट उपयोग हमें इस गीत में दिखाई देता है। कैमरे की गति दर्शकों को रोमांचित करती है और लाइट इफेक्ट इस गीत को और भी भव्य बनाते हैं, और ये गीत हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ तकनीकी गीतों में गिना जाता है।

श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बैंग बैंग फिल्म से। ये गीत विदेशी लोकेशन पर फिल्माया गया है और ये गीत आधुनिक सिनेमाई शैली का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ड्रोन कैमरा, सुंदर दृश्यांकन और डिजिटल संपादन ने इस गीत को विशेष बनाया है। समुद्र तट और प्राकृतिक दृश्यों का इसमें बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है और नृत्य और कैमरा गति में भी बड़ा ही संतुलन दिखाई देता है। ये गीत युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय रहा। आइए सुने बैंग बैंग फिल्म से ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और आइए कार्यक्रम के अंत में सुने ये गीत।

वॉर फिल्म का ये गीत 4K कैमरा और तकनीक और उत्कृष्ट रंग संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तट पर फिल्माए गए दृश्य अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। कैमरा एंगल और धीमी गति के दृश्यों ने भी इस गीत को और भी आकर्षक बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अब दीजिए मुझे यानी रूपाली को इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे मराठी कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

लागी तुम सेंगा ला।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पंडित मणिराम का ख्याल गायन राग था सावेरी तोड़ी। शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विदिशा जिले की चिट्ठी, आलेख वेद प्रकाश शर्मा का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। सबसे पहले बात विदिशा नेशनल लोक अदालत की। जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों में 34 खंडपीठों का गठन कर आपराधिक, सिविल, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक और राजस्व से जुड़े कुल 1716 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश शेख सलीम ने बताया कि इन मामलों में करीब 5,99,00,000 रुपए की सेटलमेंट राशि तय की गई है। अदालत के साथ न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने विदिशा जिले के खामखेड़ा कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत चल रही नल जल योजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि 46 लाख रुपए से अधिक की लागत से रेट्रोफिटिंग योजना के तहत नया नलकूप, सम्प वेल और करीब 5,000 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे अब गाँव के सभी घरों तक नल कनेक्शन पहुँचा दिए गए हैं। अब बात मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में नई सोनोग्राफी सेवा शुरू की गई है। इससे अब क्षेत्र के मरीजों को जाँच के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। खामखेड़ा आंगनवाड़ी सेक्टर केंद्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 31 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को FTK किट से पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया। इसी कड़ी में शासकीय ITI विदिशा में जिला होमगार्ड विभाग ने आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की। प्राचार्य कविता रघुवंशी ने बताया कि छात्रों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में नई पहलें देखने को मिल रही हैं। पीएम श्री योजना के तहत डाइट विदिशा में कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों के लिए विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 चरणों में चले इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग की जानकारी दी गई। वहीं चलो घाट की ओर अभियान के तहत बेतवा नदी संरक्षण के लिए साप्ताहिक श्रमदान शुरू किया गया है। जन अभियान परिषद के सहयोग से चल रहे इस अभियान में युवा और सामाजिक संस्थाएं नदी घाटों से जलकुंभी, प्लास्टिक और अन्य कचरा हटा रहे हैं। विदिशा जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वगणना अभियान की सराहना की। गोड़खेड़ी गांव में 100% स्वगणना कराने वाले शिक्षक KG राजपूत समेत अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कृषि क्षेत्र में विदिशा जिले के किसान नई पहचान बना रहे हैं। पारंपरिक गेहूं चना की खेती छोड़ अब कई किसान ड्रैगन फ्रूट, चिया सीड और कलौंजी जैसी औषधीय फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रगतिशील किसान यशवंत तिवारी ने बताया कि चिया सीड की खेती से किसानों को प्रति बीघा 70,000 से 1,00,000 रुपए तक की शुद्ध आमदनी हो रही है। वहीं सिरसी गांव के किसान विपुल श्रीवास्तव ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बेहतर काम करने पर विदिशा जिले को बड़ी उपलब्धि मिली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निदेशक सुमित मिश्रा ने विदिशा को देश के टॉप 5 जिलों में शामिल होने पर जिला प्रशासन की सराहना की है। खासतौर पर स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार अपडेट अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग और DEGS टीम की प्रशंसा की गई। अब बात विदिशा जिले से मिली हुई कुछ प्रेरणादायक खबरों की। ITI से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पढ़ाई करने वाले अनिकेत मैना आज MPEB में प्लांट ऑपरेटर बनकर 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। वहीं केमिकल इंजीनियर चिराग गौर ने ITI से मैकेनिक डीजल ट्रेड का प्रशिक्षण लेकर बुधनी प्लांट में अप्रेंटिसशिप हासिल की। पीएम विश्वकर्मा योजना से 1 लाख रुपए का कर्ज लेकर भारत सिंह ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोली है। वहीं वन स्टॉप सेंटर ने गलत ट्रेन में चढ़ जाने से विदिशा पहुंची 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के बाद बिहार के मधुबनी में उनके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाया। इसके अलावा आरबीएस के योजना के तहत नटेरन की 10 वर्षीय खुशी का आयुष्मान कार्ड से भोपाल के चिरायु अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग का सफल निशुल्क ऑपरेशन हुआ। विदिशा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा का था, वाचन था धारणा सचदेव का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है।
0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे फोन नंबर 2710223 और 2710224 पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त रूपाली चौहान। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक ने हमारी जिंदगी को कितना आसान, कितना तेज और हमारी जिंदगी को कितना स्मार्ट बना दिया है। मोबाइल से लेकर मशीनों तक और ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर डिजिटल पेमेंट तक टेक्नोलॉजी हर कदम पर हमारे साथ है। तो आइए आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की और देखते हैं कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले हमारे पहले श्रोता कौन हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, किससे बात हो रही है मेरी?
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: अच्छा हसीना जी, आप तो हमारी नियमित श्रोता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली कॉलर आप हैं हमारी। तो जैसे मैंने अभी कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आज हम बात करेंगे तकनीक की, तो चलिए मोबाइल फोन से ही शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से ये फोन भी आपने मोबाइल से ही लगाया होगा।
1: जी जी।
0: तो मुझे बताइए, सबसे पहले आपके पास मोबाइल कब आया था?
1: मेरे पास ये टच वाला तो बहुत दिन बाद आया मैडम, मगर जो बटन वाला होता है ना, वो 2006 में लिया था मैंने।
0: अच्छा, कीपैड वाले जो चले थे पहले?
1: हाँ, कीपैड वाले। और बहुत कम लोगों के पास रहते थे मैडम, अपन ऐसा लगता था कि ये मोबाइल है तो ये बहुत पैसे वाले होंगे शायद।
0: अच्छा, टच स्क्रीन वाले कम लोगों के पास होते थे।
1: हाँ, और जैसे किसी के पास एसटीडी रहती थी मैडम, तो वहाँ पर जाना पड़ता। जैसे पहले एमएच हॉटलाइन आता था दिन में 11 बजे, तो दूसरे के यहाँ पे जाना पड़ता था। मगर पहले जैसे लोग थे ना, वो मना नहीं करते थे, किराने दुकान पे जाके फिर हम फोन लगाते थे, हमारे पास नहीं था जब। अच्छा। मगर वो लोग मना नहीं करते थे, आधा घंटा तक व्यस्त रखते थे, बिजी रहते थे हम लोग, मगर वो लोग मना नहीं करते थे। अभी तो कभी किसी के पास जाए तो बोले नहीं लग रहा है तो हट जाओ यहाँ से।
0: अच्छा,
1: पहले के लोग बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: और आज भी अच्छे हैं बहुत, दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, उन्हीं से दुनिया चल रही है। ऐसा नहीं कि अभी अच्छे नहीं, अभी भी अच्छे लोग हैं।
0: हाँ, और हसीना जी एक बात हम ये जानते हैं कि आप भी अच्छे अच्छे गीतों की फरमाइश करती हैं, तो आपसे बातें और भी होंगी। पहले मुझे बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: ये फिल्म का नाम है 19 लंदन और गाने के बोल हैं, सुन

0: सुना दीजिए।
1: क्या बात है, आपकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो टच वाले कीपैड वाले फ़ोन आते थे और अभी के ये जो पहले के जो कीपैड वाले फ़ोन थे और अभी के जो टच स्क्रीन वाले फ़ोन हैं, इनमें क्या अंतर हैं और कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगता है?
0: बेहतर तो ये टच वाला मोबाइल लगता है मैडम, क्योंकि इससे उनको क्या सारी सुविधा मिल जाती है, बैंक से भी जुड़े रहते हैं, फिर ये बिल ये ऑनलाइन भी जुड़े रहते हैं, बिल भरना रहता तो कहीं जाना नहीं पड़ता मैडम, सब घर पे से काम हो जाते हैं इससे। मगर एक थोड़ा ये भी दिक्कत भी है, ज्यादा दिमाग लोग लगाते ना तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जो कालाबाजारी करते हैं, जो क्राइम जो हो रहा है ये थोड़ा रुक जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे बहुत सुविधा मिल जाएगी, मगर नहीं हो रही है ऐसा।
1: अच्छा देखिए, उसके लिए उससे क्राइम को रोकने के लिए हम लोगों को खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा। सरकार हमें कई बार हिदायतें देती हैं, ऐड के जरिए देती हैं, समाचार पत्रों में विज्ञापन आते हैं, वे हमें बहुत सावधानी बरतने की सलाह देती हैं, तो जब तक हम खुद सावधान नहीं होंगे, हम खुद जागरूक नहीं होंगे, तो ये बदलाव कैसे आएगा?
0: जैसे पहले तो लोग जैसे फोन आते थे तो जिसको मालूम नहीं था तो जैसे ही टच वो मोबाइल फोन करते थे, जैसे ये दबाओ वो दे दो तो वो कर देते थे, मगर अभी तो लोग नहीं करते ऐसा। और कभी कभी तो हमारे भाई इतना चालाक है मैडम, जैसे वो बोलते ऐसा करो तो वो पहले पूछते कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे, तो उधर से ना नाम नहीं बताते ना बोलते थे, हम लोग फोन काट देते।
1: तो देखिए कहीं ना कहीं जागरूकता तो आई है।
0: हाँ बैंक वाले कभी किसी को कॉल नहीं करते, SMS आता है बस सिर्फ।
1: बिल्कुल, और ये सारी बातें भी हमें इस डिजिटल दुनिया के कारण ही पता लगी हैं कि इस तरह से आप बिल्कुल बेवकूफ ना बनिए और जागरूक रहिए।
0: बहुत बहुत लोग जागरूक हो गए मैडम, जब जैसे कभी कम पढ़े लिखे रहते देहाती लोग वो कर देते कभी कभी मिस्टेक। हाँ ज्यादा तो नहीं हो रहा अभी फिलहाल, तो नहीं हो रहा है।
1: हाँ चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आइए देखते हैं कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले अगले श्रोता कौन हैं। हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग सलती उमर रीना।
0: कश्मीर से आप बोल रहे हैं?
1: हाँ, कश्मीर सोनामर्ग।
0: सोनमर्ग से?
1: हाँ सोनामर्ग।
0: अच्छा, अभी तो इंदौर में इतनी गर्मी है ना कि कश्मीर का नाम सुनते ही बहुत अच्छा लग रहा है।
1: सही बात, कल यहाँ रात को बारिश आया था, अभी मौसम थोड़ा हल्की फुल्की ठंडी है यहाँ पे।
0: अच्छा, यहाँ इंदौर में तो करीब अभी सुबह का ही हमारा तापमान 37 या 38 डिग्री होगा।
1: हाँ हाँ सही बात, वहाँ तो होगा, यहाँ तो अभी नहीं है ऐसा मौसम, लगभग जून जुलाई में ऐसा मौसम जाएगा यहाँ।
0: आपका नाम मैं फिर से पूछना चाहूंगी, नाम क्या बताया आपने?
1: लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ अहमद जी
1: रैना।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: लाल दुपट्टे वाले तेरे नाम तो बता।
0: अच्छा,
1: आंखें फिल्म का।
0: आंखें फिल्म का। इस गीत को पसंद करने के पीछे कुछ वजह है, आपको क्यों पसंद है?
1: मैं तो सुन दिल के करीब ये गाना है मेरे।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ,
0: आप जानते हैं आज तकनीकी दिवस है आज। हेलो।
1: हाँ जी बोलिए।
0: और ये तकनीक का ही कमाल है कि आप वहाँ कश्मीर में हैं और आपकी यहाँ इंदौर में बातचीत हो रही है।
1: हाँ सही बात।
0: तो क्या आपको लगता है कितना प्रभाव डाला है तकनीक ने हमारे जीवन पर?
1: बहुत अच्छा, टेक्निक बहुत अच्छा है, हम अभी अमेरिका भी कर सकेगा काल, इतना टेक्निक का मसला है।
0: अच्छा जी बिल्कुल।
1: हाँ।
0: और आप ये इंदौर आकाशवाणी सुनते हैं रेगुलर?
1: रेगुलर मैं ज्यादा फोन इंफॉर्मेशन में, यूट्यूब में क्यों बोलूंगा, फोन इंफॉर्मेशन में सुनता हूँ।
0: अच्छा, फोन इन फरमाइश के आप गीत सुनते हैं?
1: हाँ वो मैं ज्यादा सुनता हूँ।
0: चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और हमें बहुत खुशी हुई कि इतनी दूर के श्रोता भी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: हमारे साथ एक श्रोता है, उन्हें बहुत दिनों से मेरा कॉल किया, लोकेंद्र वर्मा नाना खेड़ से।
0: अच्छा, लोकेंद्र वर्मा जी नाना खेड़ा से। हाँ, उनके कॉल तो आते रहते हैं हमारे कार्यक्रम में।
1: उन्हें बहुत दिनों से मेरे को फोन भी नहीं उठाया, ना किया कॉल, क्या पता क्या मलालदारी है उनकी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए, हमारी आपसे कोई मलाल नहीं है, आपकी फरमाइश पर हम
1: उनको मैं इसकी वजह से नमस्कार कहने
0: जा। अच्छा अच्छा, चलिए, तो कार्यक्रम के माध्यम से आप उनसे नमस्कार कह चुके हैं। लीजिए, अब सुनिए आपकी पसंद का आंखें फिल्म का।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार, किन से बात हो रही है मेरी?
0: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन, कोहिनूर कॉलोनी से।
1: अच्छा जीनत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जीनत जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: मैं अजीबा पिक्चर का सुनना चाहूंगी।
1: अच्छा,
0: या अली मेरा नाम है अली।
1: अच्छा, अमिताभ जी की ये फिल्म है अजूबा, जिसमें शायद वो जादूगर का शायद किरदार था उनका, ऐसा ही कुछ, मतलब उसमें वो करतब दिखाते थे। आपने फिल्म देखी है ये अजूबा?
0: वो तूफान में दिखाते थे मैडम।
1: अच्छा, तूफान फिल्म का था, और अजूबा फिल्म में क्या था उनका किरदार?
0: उनका तो किरदार तो क्या, वो थे मोमेडानी
1: वो। अच्छा अच्छा, चलिए, फिल्में देखने का शौक है आपको?
0: हाँ, तो देखती हूँ कब, मगर रेडियो ज्यादा सुनती हूँ।
1: अच्छा अच्छा फिल्मों में आपको पुरानी फिल्में ज्यादा पसंद है या अभी जो नई फिल्में आ रही हैं?
0: पुरानी
1: फिल्में ज्यादा पसंद है। अच्छा,
0: मैं देखती थी, पापा पहले टाकी चलाते थे।
1: अच्छा, मैनेजर वगैरह थे,
0: ऑपरेटर थे, मशीन चलाते थे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी, तो फिर तो आपके लिए तो फ्री होती होगी फिल्में।
0: हाँ, फ्री रहती थी, लंच देने जाते थे टीचर तो सिस्टर के साथ तो देख लेते थे।
1: अच्छा,
0: अच्छी थी तो फिर बुलाते ही थे।
1: हाँ, मतलब जब तक मन हो फिल्म देखो और ना मन हो तो फिर उठ के वापस आ जाओ
0: जी।
1: अच्छा, मोबाइल आने के बाद टॉकीज का क्रेज कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, क्या फर्क पड़ा है, क्या सोचती हैं आप?
0: कम तो हो गया वैसे,
1: क्योंकि पहले सिर्फ फिल्में टॉकीज में ही देखी जाती थी।
0: मैं तो वैसे कीपैड ही चलाती हूँ, मोबाइल तो चलाती ही नहीं हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
0: मोबाइल का शौक है भी नहीं मुझे चलाने का
1: जी,
0: कीपैड मोबाइल है मेरे पास तो बस वही चलाती हूँ मैं तो।
1: अच्छा, और हाउसवाइफ है या कुछ आप काम करती हैं जी?
0: हाउसवाइफ ही हूँ मैं।
1: अच्छा, सबसे बड़ा काम तो वैसे वो ही है, हाउसवाइफ होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है।
0: अभी दो चार काम निपटा लिए, खाना बन गया है और बर्तन वर्तन बन गया, झाड़ू दे ली अब।
1: अच्छा, मतलब अपने कामों में से भी आप अपने लिए वक्त चुरा ही लेती हैं।
0: निकाल लेती हूँ वक्त, पहले नल भी जैसे 10 बजे चलते थे, आजकल वो भी देर से चलते हैं, तो इसलिए टाइम मिल जाता है फिर मेरे को फोन लगाने का। कभी फोन बदल गया नल का तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ।
1: चलिए, अच्छी बात है, गर्मी के समय में भी आपके यहाँ नल आ रहे हैं, पानी की पूरी व्यवस्था है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जीनत जी, लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का अजूबा फिल्म का ये गीत, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आइए देखते हैं हमारे कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में अगला कॉल किसका है। हेलो
1: हेलो
2: हेलो।

हमेशा ये फरियाद करते रहोगे रहोगे हमेशा ये फरियाद करते रहोगे। करो आज तौबा तौबा करो आज तौबा मुसीबत टल।

0: श्रोताओं आइए देखते हैं हमसे जुड़ने वाले अगले श्रोता हमारे कौन हैं। हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बीआर नामदेव बोल रहा हूँ।
0: अच्छा नामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपके बहुत सारे खत हमारे अलग अलग कार्यक्रम चॉइस टाइम मन भावन इन सभी में शामिल होते हैं और हमें पता है आप हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, तो बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: लाल बंगला का।
0: लाल बंगला फिल्म से?
1: हाँ हाँ हाँ
0: जी।
1: और आपकी आवाज भी बहुत,
0: हाँ जी
1: आपकी आवाज भी बहुत सुंदर, आवाज अच्छी लगती है आपके।
0: धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नामदेव जी, जैसा आप जानते हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, तो गाना सुनने के पहले क्यों ना कुछ बातें टेक्नोलॉजी की हो जाएं?
1: आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ रही है मैडम।
0: हाँ अच्छा, आपको याद है आपने सबसे पहले मोबाइल फोन कौन सा लिया था, कौन सा वाला था? हेलो, देखिए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और टेक्नोलॉजी की ही ये दिक्कत हमारे सामने आ गई है। लेकिन बातों से पहले हम नामदेव जी से पूछ चुके थे कि उन्हें कौन सा गीत सुनना है लाल बंगला फिल्म से। गीत तो मैं उनसे नहीं पूछ पाई, लेकिन लाल बंगला फिल्म से ही मैं ये गीत उनको सुनवा रही हूँ। और नामदेव जी, मुझे पता है आप मुझे सुन रहे होंगे, तो कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और श्रोताओं, ये बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी आकाशवाणी की जीवन डोर भी आप श्रोताओं के हाथ में ही है। आप लोगों के कारण ही आज रेडियो जिंदा है। आइए देखते हैं कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता कौन हैं। हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते रूपा जी।
0: नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: हम आकाशवाणी के जाना माने श्रोता अनिल भंडारे सुजामनगर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा भंडारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके भी बहुत सारे खत हमारे हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और आप शायद हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: हम बहुत पुराने श्रोता है जी। पुराना गीत संगीत के हम दीवाने हैं।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज हम पुरानी फिल्म पतिता का गाना सुनना चाहेंगे।
0: पतिता फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: बहुत जोरदार लता ने गाया, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा।
0: नूतन जी की ये फिल्म है।
1: नूतन जी की फिल्म है
0: जी।
1: और लेकिन ये गाना बता दो, गाना उषा किरण पे फिल्म आया गया है, उस समय की नायिका थी।
0: अच्छा अच्छा, हाँ जी, नाम तो सुना है जी।
1: ये गाना उषा किरण के ऊपर सुना गया है और उषा नायिका थी, लेकिन इसका रोल बहुत सुंदर था, ये गाना इसके ऊपर गाया गया है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सामने दीवान बैठे हुए गाना सुन रहे हैं इसको।
0: क्या बात है।
1: अपना उसको अपना प्यार मिलने की खुशी हो रही है कि वो बयान नहीं कर पा रही है।
0: हाँ हाँ, आपने तो पूरा सीन हम लोगों की आंखों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। वैसे यदि मुस्कुराने की बात की जाए भंडारे जी, तो यदि आप जब उदास होते हैं तो किस चीज को देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है?
1: जी, हम तो पुराना गीत संगीत को देख के मुस्कुराते हैं।
0: अच्छा अच्छा, यही
1: बात है।
0: क्या बात है,
1: यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का हमारा आगे बढ़ने का साहस है हमारे पास में।
0: अच्छा,
1: मतलब आप यकीन नहीं करें, एक दिन खाना पीना हम छोड़ सकते हैं, लेकिन पुराना गीत सुनना कभी बंद नहीं कर सकते।
0: अरे
1: हमारी जान है।
0: क्या बात है, क्या
1: रूह है, हम उसको छोड़ सकते नहीं।
0: आपसे बातचीत के पहले मैंने यही बात कही थी कि रेडियो की जान ही हमारे श्रोता हैं, जीवन रेखा ही रेडियो श्रोता है।
1: बहुत बड़ा काम चल रहा है हमारे
0: जी।
1: और अभी 90 साल हो रहे हैं आकाशवाणी को, इंदौर को आकाशवाणी को, उसको भी बधाई दे रहे हैं हम आपको।
0: हाँ जी, उस जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जितनी खुशी हम लोगों को है उतनी ही खुशी आप लोगों को भी है, और आप लोगों के कारण ही आज रेडियो की पहचान अभी तक बनी हुई है।
1: और आप भी इतने मुस्कुरा से बात करती है, इतने मीठे आवाज में बात करती है कि हम आपके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मानव सूरज को चरक दिखाने लायक हो गए जी आपसे।
0: क्या होते हैं आप लोगों की बातें सुन के ऐसे ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और गीत भी आपने बहुत अच्छा पसंद किया है,
1: और आप सुरीले में गाने हमें आपके पसंद पर सुनाए करो तो हमें खुशी होगी।
0: जी जी जी, अभी तो हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके भंडारे जी। और लीजिए, और कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है
1: बस आप इसी तरह हमारे मनोरंजन करते हुए जी, हम आपके अपेक्षा करते। तो एक बात बता देंगे आपको, 22 मई को
0: 75
1: साल सुनते हुए कार्यक्रम पे हो जाएंगे।
0: अच्छा,
1: ये क्रम जारी है।
0: अच्छा, मतलब आपकी एज, आपकी उम्र इतनी हो जाएगी?
1: मेरी उम्र 84 चल रही है मेरे मार।
0: अरे क्या बात है। तो
1: ये पुराना शौक हमको 71 साल से लगा हुआ, जब हमारी उम्र 14 साल की थी तब से शौक लगा हुआ हमको, और आज भी कायम है।
0: तो चलिए, हमारी तरफ से और पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं, और जल्दी से बताइए पार्टी कहाँ पर रहेगी?
1: पार्टी रहेगी, बहुत बड़ी पार्टी देंगे आपको, फिर आपको हमको हुक्म करो, आदेश करो, उस आदेश का पालन करेंगे जरूर।
0: अरे क्या बात है, चलिए। तो
1: और आपका हमारे घर के पास ही रहती है, आप कभी भी आ सकते हैं पार्टी में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नगर आपका घर मतलब जो पास में है, कोई दूर नहीं है।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, सुदामा नगर तो मेरे घर के पास में ही है।
1: घर के पास में आप कहीं आ सकते, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे यहाँ।
0: तो चलिए, हमें इंतजार रहेगा आपके जन्मदिन की पार्टी का, और आपकी फरमाइश पर प्रस्तुत है पतिता फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।

0: श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। और आइए देखते हैं हमसे जुड़ने वाले अगले श्रोता कौन हैं। हेलो,
1: मैं शिवा देवानंद बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, इंदौर से बोल रहे हैं।
1: हाँ,
0: अच्छा जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं। पहले मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: झुक गया आसमान का।
0: झुक गया आसमान, जी।
1: हाँ।
0: इस फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: डुमडी मिली नजर उनसे।
0: उनसे मिली नजर की मेरे होश हाँ। उड़ गए, ये वाला?
1: हाँ, हाँ।
0: अच्छा अच्छा, ठीक हाँ। है, क्या करते हैं सर आप?
1: आपके कार्यक्रम सुनते है।
0: अच्छा,
1: मैं बचपन में वो मेरे को बोलने में वो है।
0: हाँ, आपको बोलने में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन आपकी बात फिर भी हम तक पहुंच रही है। और देखिए, हाँ। फिल्म का नाम भी मैंने सही लिया ना?
1: हाँ, बिल्कुल सही जी। आपसे एक बार बात हुई थी आपको, आपकी आवाज में।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, मुझे भी याद आ रहा है कि कुछ महीनों पहले एक बार
1: में।
0: जी जी जी, जब हमारा हाँ। मतलब रात्रि वाला जो लाइव फोन इन है वो शुरू हुए थे उस वक्त, वो कार्यक्रम हाँ। उस वक्त शुरुआत में आपसे बात हुई थी जी।
1: हाँ,
0: तो मैं भूल गई हूँ, आप क्या करते हैं?
1: नहीं, मैं अभी वापस लेता हूँ।
0: अच्छा
1: हाँ, और अभी गए पापा की भी सेवा करना हूँ।
0: क्या बात है, अपने माता पिता की सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है। अभी
1: पापा है, माँ है, अभी वो बीमार है
0: जी। तो चलिए, हमारी ऐसी कामना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और लीजिए, प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं आइए देखते हैं कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले अगले श्रोता कौन हैं। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: अच्छा रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: और आपकी क्या हालचाल?
0: बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के ही हमारे हालचाल अच्छे हो गए। रानू जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ, मूवी का नाम है हेट स्टोरी 3
0: जी,
1: और गाने के बोल है वजह तुम हो जी।
0: अच्छा, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके जीवन में ये वजह कौन है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो ये कौन है?
1: मुस्कुराने की वजह तो देखिए मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, मतलब कहो तो फैमिली परिवार है।
0: जी जी
1: जी।
0: लेकिन फिर भी बेटे को देखकर ज्यादा मुस्कान आती है या पति देव को देखकर?
1: देखिए मतलब बेटे की तरफ थोड़ा ज्यादा ही झुकाव है।
0: वैसे आमतौर पर ये कहा जाता है कि पतियों का जो सिरदर्द है वो पत्नियों की वजह से होता है, ये बात आप कहाँ तक ठीक मानती हैं?
1: देखिए मानती तो हूँ, कभी कभी मैं भी सरदर्द कर देती हूँ अपने हस्बैंड के, बट ये सा होता है कि वो ये कहते हैं, मतलब वो क्या सब मेरे अकॉर्डिंग तो सभी हस्बैंड बोलते होंगे कि पत्नी के बिना घर मतलब अच्छा नहीं लगता, सूना सूना लगता है।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही, बहू हो चाहे पत्नी हो,
1: अच्छा लगता होगा जैसे कि चलो ठीक है, जैसे वाइफ मना कर देती कहीं पार्टी में मत जाना या मतलब कुछ भी, तो थोड़ा बुरा उनको लगता होगा, कभी कभी आजादी छीन जाती ना उन लोगों की।
0: अच्छा अच्छा, तो आपकी बात वो मानते हैं मतलब?
1: वैसे तो मतलब 95% तो मानते हैं।
0: हाँ हाँ, मतलब तो होम मिनिस्टर तो आप ही हैं फिर।
1: और जैसे कि कुछ मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है ना उनको, तो बहुत बार मतलब उनका डिसीजन सही होता है, तो वो फिर मेरी भी नहीं सुनते ले लेते हैं ऐसा मतलब।
0: अच्छा, मतलब जिन मामलों में आपकी राय लेनी चाहिए उसमें लेते हैं, बाकी में तो फिर
1: जी जी वो उनके फिर हिसाब से लेते हैं। जैसे कई बार मैं मना करती हूँ कि हाँ मतलब अपने को प्रॉफिट नहीं होगा, पर वो बोलते हैं कि अपने को घाटा भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा मतलब।
0: अच्छा, मतलब मार्केट की ज्यादा जानकारी उन्हें अच्छी तरह से है,
1: इसलिए हार्डवेयर प्लाई फर्नीचर प्लस किराना की शॉप है ना, तो वैसे वो व्यापारी है।
0: अच्छा
1: जी।
0: हाँ तो सही बात है, दुनिया को वो आपसे बेहतर जानते हैं।
1: जी
0: जी हाँ, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि हर चीज के लिए आपसे डिस्कस की जाती है।
1: घर परिवार में तो वैसे जो भी डिसीजन लेना है, किसी को कुछ देना लेना है, तो हम दोनों मतलब बैठकर सलाह करते हैं, वो पूछते भी हैं परिवार के मामले में तो।
0: हाँ, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको वो बराबरी का दर्जा देते हैं और हर काम में आपकी राय ली जाती है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब बहुत अच्छे हस्बैंड है आपके।
1: और मुझे पता है आपकी आकाशवाणी इंदौर से फर्स्ट टाइम आप एक ऐसी लेडी हो जो मुझे बात करके बहुत नहीं 101% अच्छा लगा।
0: क्या बात है,
1: सुन रही हूँ ना जी? आप सभी कॉलर से बहुत सारी बात कर रही हैं और मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने कॉल कर लिया है, वरना मैं ना थोड़ा सा कम करती हूँ, क्योंकि मेरा पसंदीदा है ना वो आकाशवाणी भोपाल है।
0: अच्छा, अरे अरे, ये तो आकाशवाणी इंदौर भी आपका उतना ही पसंदीदा बनना चाहिए।
1: हाँ, लेकिन करीब तो इंदौर ही है मेरे।
0: जी हाँ, देवास तो इंदौर से बिल्कुल लगा हुआ है।
1: हाँ, वैसे जाते हैं तो लगता ही नहीं कि इंदौर है, मतलब हाँ। इंदौर देवास कॉमन सा लगता है कि बस चल ही रहे हैं सिटी में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, रानू जी आपसे भी मेरी पहली बार बात हो रही है और ऐसा लग रहा है कि चलिए बरसों का याराना है, हम कोई पुरानी सहेलियां हैं।
1: अच्छा, आपका नाम बता दीजिए मुझे।
0: मेरा नाम रूपाली है।
1: रूपाली नाम,
0: RR जी हाँ, तुला राशि वाले हैं दोनों। तो रानू जी लीजिए, प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत, और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही मुझे यानी रूपाली चव्हाण को दीजिए इजाजत कार्यक्रम खत्म करने की, लेकिन कीजिए मुझसे एक वादा कि आप हमें खत लिखते रहेंगे। नमस्कार।
1: हेलो, MH हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कॉकटेल फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी नीरज श्रीधर और कविता सेठ की। गीतकार थे इरशाद कामिल और तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

चांदनी फिल्म का नगमा आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और बाबला की ये आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, शिव हरी की तर्ज़।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् ममलेश्वरम् परल्लयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशम् दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशम् त्र्यंबकम् गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् ग्रीष्मेशम् च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
3: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहां विशेष तीर्थ होते हैं वहां पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
3: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए।
1: जी
3: इसीलिए यहाँ पे प्रथम

0: 26. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes a timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है. मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से. और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं. कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है. चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है. अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है. और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं. और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है. हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है. राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है. सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को. और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है. शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं. डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है. हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है. साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे. वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहां पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी. 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था. उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में. और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है.
0: Absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: Parardhe manah shiva sankalpamastu sumukhascha ekadantas

विष्णुरा विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्त।

विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्त

0: विष्णुरा विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक, एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहाँ भी कोई मंदिर होगा वहाँ त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यावस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jaipal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jaisimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
3: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है. आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन.

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, तो एकानंद भगवान विष्णु, चतुरानंद भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से छाती के पास से सीने के पास से ये आती है, और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंड से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव है। और
1: ध्वजारोहण
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी,
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन मध्य सवन और सायं सवन तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में, हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिसपे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहां पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं, और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th of May 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस द होप दैट the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं, इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधा रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं, ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं, अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है, उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए, मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
3: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometre roadshow up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
5: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
4: In Himachal Pradesh, 6 tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. 4 others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, 5 were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarter-final match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी में नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़कर आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
0: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
0: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है? जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
0: जी।
2: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सौर लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये तीन बात, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं, इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रहकर प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
0: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आए और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
2: बिल्कुल, अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है, भगवान शिव की उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है।
0: जी,
2: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
0: जी,
2: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
0: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
2: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
0: जी,
2: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
0: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिवजी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
2: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
0: जी,
2: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है

0: बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार की शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को, तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यहाँ आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतमतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show the Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: The Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में ये पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहां पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहनाकर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशल जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्तिभाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं, और यहां पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य, और अब स्वागत उद्बोधन यहां पर
2: विश्वनाथ सौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय

जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके, और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है,

ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे। और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है।
क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ये
ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विलंब ना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है।

आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इसे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह

0: जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Hara Hara Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सोमनाथ।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। केदारनाथ फिल्म का ये गीत है, अमित त्रिवेदी की आवाज है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और धुन अमित त्रिवेदी की।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
8: हाँ हाँ क्यों नहीं,
7: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
9: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
10: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
9: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
11: आकाशवाणी इंदौर।
10: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
12: इस समय आप हैं हमारे साथ।
13: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

कोशिश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ गीत और भजन। कलाकार हैं प्राची कोकण ठानकर।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्राची कोंकण ठानकर की आवाज में कुछ गीत और भजन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद होगा।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज में चितचोर फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे यशुदास को, बोल फाग जामी के थे और धुन राजकमल की। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों से साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया।
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी सम्मिलित हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोवेट्रिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रधान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कूनू नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। आज पालनपुर कूनू में हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में दो मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर कूनू श्योपुर जिले के और चंबल मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। लगभग 5000 किलोमीटर में अब इनका बसेरा हुआ है।
1: डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश धर्म निवेश एवं जैव विविधता के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों के पुनर्स्थापना को निरंतर सफलता मिल रही है और आज प्रदेश ने देश भर में चीता स्टेट के रूप में पहचान बनाई है। वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनू नेशनल पार्क और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में सक्रिय 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज भी जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई इलाकों में तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, पादरुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देशवासियों और समस्त प्रतिभावान वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल खंडवा जिले के आवलिया में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में 10वीं 12वीं एवं ITI उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया और बरगीरेम में हुए भीषण क्रूज हादसे की न्यायिक जांच जबलपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी को सौंपी गई है, जो आगामी 3 महीनों के अपनी रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ।

0: केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में BJP सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर

0: सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग BSF को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा। BSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी

0: और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
3: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह और आप तक भेजती हूँ मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमें मालूम है कि बहुत अच्छे हैं लेकिन इस तपिश भरी दोपहरी में गर्मी से हर इंसान परेशान तो है लेकिन इस तपिश में मुट्ठी भर गीतों की छांव आकाशवाणी आप तक पहुंचाता है। तो चलिए आप जुड़ ही चुके हैं हमसे आपकी फरमाइश पर कुछ गाने हम आप तक पहुंचाने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले श्रोताओं के नाम बताते हैं जिनकी फरमाइश पर आज के कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है। ये श्रोता हैं अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार रोशन बंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव। और ये खत आया हुआ है तिल्दा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रदीप कुमार चंद्र सीमा रानी प्रिया रानी ओशीम और सोमेन। अगली चिट्ठी आई हुई है सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से। हमारे श्रोताओं के नाम हैं योगेश्वर सिंह भारतीय डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय भैरव प्रताप सिंह लोकेंद्र प्रेमाबाई और ग्राम पोस्ट बायां तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय कोशाबाई लक्ष्मी महेंद्र सचिन और तरु। और ये खत आया है फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित कुमार और गजेंद्र कुमार चंदन का सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ के हमारे ये श्रोता हैं। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। आवाज़ आशा भोंसले की है संगीत ओपी नैयर का। फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ।

और अब आइए सुनते हैं प्रोफेसर, फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं इसके लिए। गीतकार हजरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, और अनुरोध आप सबका है। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से नरेश नाचानी, भारती, विनीत, प्रगति, मिथिल नाचानी, और जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका और संप्रीत पंचोलिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। आप भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया की भी यही फरमाइश है। और ये खत आया हुआ है सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाघ, पंजाब राव और साथ में है संदीप पाटिल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं प्रोफेसर फिल्म का ये नगमा। वो अगर याद करें हमको तो भूलें किसको, हम अगर उनको भुलाएं तो किसे याद करें।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर है, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति और अतुल। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंश पल्लवी, सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट का हमने आपको नाम बताया ही। ये खत आया हुआ है इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, और इसी गीत को पसंद करते हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, शाजापुर से श्रोताओं के नाम हैं मधु राजावत, राशि, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, रिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं नीला आकाश फिल्म का गीत। इस गीत के लिए आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। गीतकार हैं राजा मेहदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन। ये मेरे दिल की मजबूरियां भी क्या खूब हैं, तुम्हारा राज तुम्ही से छुपा रहा हूं मैं।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ गीत और हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं, सुनीता सिंह। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं सीआईडी फिल्म से। आवाजें गीता दत्त और मोहम्मद रफी की हैं, बोल जानिसार अख्तर के और धुन ओपी नैयर की। अनुरोध आप सबका है। निभोरा से अशोक देशमुख, शरद बबन, शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोक वाघ, भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं सोहन जोशी, विष्णु, अज्ञिता, अमृता जोशी, लोकेश, और बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश देवांगन। और ये खत आया हुआ है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता, नेतराम और भूपेंद्र साहू। और इसी गीत को पसंद करते हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सीआईडी फिल्म का ये गीत।
2: आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया।
1: दूर ही दूर से इकरार हुआ करते हैं, कुछ इशारे पसे दीवार हुआ करते हैं।
2: बैठ बैठ

और अब आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत एन दत्ता का संगीत। इसके लिए आवाज आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। पसंद आप सबकी है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। कमर कॉलोनी बड़वाह से इसी गीत को पसंद करते हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। और मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और अंशिका। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। यूं तसव्वुर पे बरसती हैं पुरानी यादें, जैसे बरसात में रिमझिम का समा होता है।

तो श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ गीत थे ये जो हमने भेजे आप तक। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब इसके साथ ही अपनी दोस्त सुनीता सिंह को आपकी फरमाइश कार्यक्रम से इजाजत दें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपयोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शिवपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चीता स्टेट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और देश के चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को नई सफलता मिल रही है। न्यूजीलैंड का एक प्रतिनिधि मंडल बैतूल जिले के भ्रमण पर है। ये दल मधु संग्रहण एवं जनजातीय आजीविका गतिविधियों का अवलोकन कर रहा है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पारुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:40 पर कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुनेंगे 6:45 पर। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 सुनिएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है रात 10 बजे। राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद वादन राग कामोद। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोक रंग। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

नमस्कार युवा साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा युवा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपका होस्ट इंदोष राज और लेकर हाजिर हैं रोजाना की तरह आपके लिए ज्ञान विज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम युववाणी। तो साथियों, आप सभी को पता है कि प्रतिदिन रोजाना हम आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए दो प्रश्न लेकर आते हैं जिनमें आप उनको हल भी करते हैं और ढूंढते भी हैं। तो आज के दो हमारे जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं आपको, आप उनको बिल्कुल कान लगा के सुन लीजिए और कार्यक्रम के अंत में खोजिएगा कि सही उत्तर क्या है। तो आइए पहला प्रश्न जान लेते हैं आज का। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? साथियों, ये दोनों ही प्रश्न विज्ञान के हैं। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? तो मुझे आशा है कि कार्यक्रम के अंत तक आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सही लगा ही लेंगे। तो आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और सुनते हैं आज का ये पहला गीत।

आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जो भारत की वैज्ञानिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर साल 11 मई को ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन को वर्ष 1998 में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी पोखरण परमाणु परीक्षण के माध्यम से। तो भारत ने दुनिया के सामने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का दमदार प्रदर्शन भी किया था उस समय। तो साथियों, ये परीक्षण पोखरण राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया था। इस मिशन को ऑपरेशन शक्ति के नाम से पहचाना भी जाता है। इस अभियान के तहत भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को कुल 5 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए। उस समय कार्य बहुत ज़्यादा गोपनीयता और सटीक योजना के साथ किया गया था, ताकि दुनिया के बड़े बड़े देशों की नज़र उससे थोड़ी बच पाए, और ये उपलब्धि हम सभी ने उनसे बचकर और बिल्कुल विनम्रता से वो कहेंगे तो मतलब एक आत्मविश्वास के साथ हासिल की थी, जो आप सभी के सामने ही है एक मिसाल के तौर पर। तो साथियों, इस ऐतिहासिक मिशन में देश के महान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, जिन्होंने इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ है डॉक्टर R. चिदम्बरम, जिसे कई वैज्ञानिक भी इस सफलता का अहम कारण बने उस समय। दोस्तों, इस दिन का महत्व केवल परमाणु परीक्षण तक सीमित कतई नहीं है। इस दिन भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित हंस थ्री विमान का सफल परीक्षण भी किया था, और त्रिशूल मिसाइल का भी परीक्षण उस समय किया गया था। यह दिन भारत की तकनीकी प्रगति का एक प्रतीक माना जाता है। इसलिए वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की थी। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही साथियों, तब तकनीक हर क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभाई रही है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा की ही बात करें, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की, आज काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन का कल्चर बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसरो जैसी संस्थाएँ आज अंतरिक्ष में भारत का परचम लहरा रही हैं, वहीं नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं के लिए अनगिनत अवसर खोले हैं। आज के युवाओं के लिए दिन काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी अगर हम निश्चय कर लें और मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हमें समझना होगा कि तकनीक केवल मशीनों तक सीमित कतई नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीकों को बदलने की ताकत भी रखती है। तो साथियों, आइए इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हमें संकल्प लें कि हम विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग करेंगे और नवाचार को अपनाएंगे और देश के विकास में अपना योगदान जरूर देंगे। याद रखिए, आज का नवाचार ही कल का भारत बनाएगा।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ एक अहम विषय है, लेकिन अक्सर हम उसे समझ बिल्कुल नहीं पाते। उसे कहते हैं अहंकार। साथियों, हर साल विश्व अहंकार जागरूकता दिवस हमें यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सबसे बड़ा अंतर अगर कोई पैदा करता है तो वो है अहंकार। दोस्तों, अहंकार यानी मैं की भावना। जब हमें लगता है कि हम सबसे बेहतर हैं, हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती और हमें किसी की सलाह की कतई ज़रूरत नहीं है, वहीं से अहंकार जन्म ले लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही अहंकार हमारे रिश्तों को तोड़ सकता है, हमारे विकास को रोक सकता है? कहते हैं जहां अहंकार होता है वहां सीखने की गुंजाइश खत्म सी हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने काम में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और अच्छा कर भी रहा है, लेकिन उसे अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म कतई नहीं आती। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। वहीं जो व्यक्ति विनम्र होता है वो न केवल अपनी गलतियों से सीखता है बल्कि दूसरों के दिलों में भी जगह बना पाता है। तो साथियों, युवाओं के लिए विषय और महत्वपूर्ण कई ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आज का जो कल्चर है बिल्कुल बड़ों से बात करने का, छोटे से स्नेह देने का, और आजकल के समय में सोशल मीडिया और प्रतियोगिताएं दिखावे की दुनिया में हम अक्सर खो ही जाते हैं कि किसी ने ये पहना हुआ है या कोई इस मुकाम पर है, तो हम थोड़ा सा हमारे मन में अहम पैदा हो ही जाता है और इसी दौड़ में हम अनजाने में अहंकार को अपना साथी भी बना लेते हैं। तो साथियों, हम अहंकार को कैसे पहचानें और उससे कैसे बचें? छोटे छोटे उपाय हैं, उनको आप अपना कर खुद जान सकते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ। सबसे पहले खुद को जानिए, दूसरों की बात सुनने की आदत डालिए यानी श्रवण शक्ति, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और सबसे ज़रूरी कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड को अपनाइए। जब हम धन्यवाद कहना सीख जाते हैं तब अहंकार अपने आप में कम होने लगता है, या फिर ये कहें कि कम सा हो ही जाता है। तो दोस्तों, महान व्यक्तियों की एक खासियत होती है उनकी विनम्रता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन्होंने हमेशा सीखने को प्राथमिकता दी है, ना कि खुद को सर्वोपरि मानने की। तो इस विश्व अहंकार जागरूकता दिवस पर हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें, हम अपने अंदर के अहंकार को पहचानेंगे और उसे कम करने की कोशिश करते ही रहेंगे, बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाते ही रहेंगे। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, झुकने से इंसान छोटा बिल्कुल नहीं होता है बल्कि बड़ा बन जाता है और सबके दिल में जगह भी बना पाता है।

बदल जाती है। इसके प्रभाव से कम खतरनाक इसके प्रभाव में कम खतरनाक बिल्कुल नींद ना आना, चिड़चिड़ापन हमारे शरीर में होना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना और कई बार मानसिक व शारीरिक बीमारियों का पैदा हुआ हो जाना। लेकिन ध्यान रखिए साथियों, तनाव दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की ज़रूरत सी है।

वो दिन भी क्या दिन थे। तो साथियों, तनाव शब्द शायद अभी अभी प्रचलित है। अगर आप हमारे बचपन में जाएं तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि तनाव नाम का कोई शब्द था ही नहीं। स्कूल की छुट्टियां और एग्ज़ाम के बाद हम नानी के घर चले जाते थे, तो बिल्कुल खुशहाली से आते थे और वापस से जुलाई में जून में स्कूल चले जाते थे।

तो तनाव नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं थी। बाकी जैसे जैसे लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम प्रतिस्पर्धा करते जा रहे हैं, तो तनाव हमारे जीवन में घर सा करने लगा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन तरीकों की जो हमारे जीवन को तनाव मुक्त और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, सकारात्मकता सोच अपनाइए। हर स्थिति में क्यों मेरे साथ ही सोचने की बजाय इससे मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, ज़रा ये सोचिए। टाइम मैनेजमेंट, अक्सर हम काम को टालते रहते हैं और फिर अचानक दबाव सा बढ़ जाता है। अगर आप अपने दिन को सही तरीके से प्लान करेंगे तो आधा तनाव तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब जान लेते हैं योग यानी ध्यान या फिर मेडिटेशन, जो भी कह लो आप। तो हर दिन सिर्फ 5 से 15 मिनट का ध्यान भी आपके दिमाग को शांत कर सकता है। गहरी सांस ले और सांस को छोड़ें, और कुछ जैसे प्राणायाम होते हैं उनको आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं और तनाव मुक्त धीरे धीरे अपने जीवन को घटा भी सकते हैं। अब अपनी हॉबी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कोई गाना गाना जानता है, डांस, पेंटिंग, लेखन, कुछ भी जो आपको सुकून देता है, तो भले आप उसको एक प्रोफेशनल ना बनाएं पर अपने अपने खुद के लिए, अपने शौकिया तौर पे आप उसको अपनी डेली जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें आप शामिल कर सकते हैं। सोशल कनेक्टिविटी बनाएं। जब भी मन भारी हो किसी अपने से बात कीजिए। कभी कभी सुनकर भी और बात करके भी हमारा मन हल्का सा हो जाता है। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइक देखकर अपने अपनी ज़िंदगी को उससे तुलना कतई मत कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी दूरी बनाएं उन सभी से और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल से जिए। क्योंकि कुछ लाइक्स और कुछ व्यूज़ के लिए हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी ज़िंदगी में अभी कैसा वक्त चल रहा है या फिर क्या स्थिति है। और ख़ुद को स्वीकार करें, आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। इसलिए खुद को दूसरे से तुलना करना बंद कीजिए और याद रखिए, खुश रहना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह एक आदत है जिसे हम रोज़ रोज़ थोड़ा अपना कर जी सकते हैं।

दोस्तों, खुशी और गम हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसे अपनाकर हम मजबूत तो बनते ही बनते हैं और अनुभवी भी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ खूब कहा है कि मुस्कुराओ, मुस्कुराने से गम दिखाई नहीं देते। तो साथियों, प्रिय श्रोताओं, जिंदगी एक किताब की तरह है, जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। कुछ पन्ने खुशियों से भर जाते हैं तो कुछ संघर्ष से, लेकिन हर पन्ना हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना शुरू कीजिए। सुबह की ताज़ी हवा में, किसी अपने की मुस्कान में, या अपने काम को पूरा करने की संतुष्टि में, यही असली खुशी है। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफ़र है, और इसी सफ़र में सबसे ज़रूरी है खुद से प्यार करना, खुद को समझना और खुद को समय देना। अगर कभी लगे कि सब कुछ भारी सा हो गया है, तो बस एक काम कीजिए, रुकिए और गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए सब ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, गर्मी प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और अब तो नौतपा भी लगने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं कि पेड़ पौधे अगर ज़्यादा होते हमारी सड़कों पर या फिर गांव के कई छोरों पर, किनारों पर, तो कितना अच्छा होता ना। खैर, अब तो विकास के नाम पर सारे पेड़ टूटते से जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग की तरह जो भी है कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे गर्मी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर पेड़ पौधे और मानव प्रकृति का एक अनमोल उपहार सी है या धरोहर भी हम उन्हें कह सकते हैं, इनके बाद प्राणी मात्र का जीवन संभव नहीं है। अगर प्रकृति का संरक्षण हम सभी का प्रथम दायित्व है और पौधे का रोपण कर देना ही काफ़ी ज़्यादा एक काम सा नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल करना, संवर्धन करना, ये भी हम सभी मनुष्यों का एक कर्तव्य सा बन जाता है। अगर हम पेड़ लगाएं तो उसकी देखभाल भी करें कि वो दिन प्रतिदिन कितनी उन्नति कर रहा है, किस अवस्था में है, तो ये काम हम करते रहें। पेड़ पौधे धरती का आभूषण है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि पेड़ न केवल पर्यावरण के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन में पेड़ पौधे का एक अहम महत्व होता है। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पर कई सारे कारण हैं जो हम मनुष्यों ने खुद पर्यावरण को नुकसान पैदा कर कर कई चीज़ें अहाथी कर दी हैं। जैसे कभी नदी जो है, तालाब जो है, उनको गंदगी कर कर, प्लास्टिक डालकर। और हम सोचते भी हैं कि हम कम कुछ ऐसा अभियान चलाएं जिससे पेड़ पौधे लगाएं और नदियों की सफाई करें, पर एक समय के बाद सारे अभियान बंद से हो जाते हैं और ठप से पड़ जाते हैं। अगर हम युवा सोचें कि हम कुछ को काम को ठान ले और उसको जीवन पर्यंत एक मिशन बनाकर करते रहें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रकृति और पर्यावरण की हम एक सुंदर छवि देख सकते हैं।

साथियों, हम कई बार शहर को छोड़कर कई बार गांव की ओर पलायन कर लेते हैं या फिर गर्मी को छुट्टी बिताने के लिए चले ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां होता है गांव में एक सुंदर सा वातावरण, नदी तालाब पहाड़ झरने पेड़ पौधे, और शहर से दूर एक शोर से दूर एक प्यारी सी जिंदगी। तो यह थी पर्यावरण की बात और गांव की बात। अब आप सभी को पता है कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में आप सभी से दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न किए थे, तो उनके उत्तर भी सही क्या हैं उनको जान लेते हैं। तो साथियों, हमारा आज का पहला प्रश्न था, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है शुक्र। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था कि परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है नाभिक। आशा है आपको आज का युवाणी कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने साथी राज को।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा के स्वर में सुनिए द जेंटलमैन फिल्म का गीत। बोल है इंदिवर के, धुन है अनु मलिक की।

आइए अब सुनते हैं मोहरा फिल्म का गीत। स्वर हैं पंकज उदास और साधना सरगम के, बोल इंदिवर के, धुन है विजू शाह की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म खुद्दार से। स्वर हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के, बोल राहत इंदौरी और धुन है अनु मलिक की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओ, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर द्वीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
2: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन सर।
3: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
4: यस सर।
3: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
4: Yes, sir. We have seen.
5: I have seen, sir.
6: I like bicycle, sir.
7: I love it.
3: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me, how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
3: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
4: Yes, sir!
3: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
4: Yes, sir!
3: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
4: Trin, trin, trin, trin.
3: Do it again, please.
4: Trin, trin, trin.
3: I have a red bicycle.
4: I have a red bicycle.
3: I pedal and I ride.
4: I pedal and ride.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
4: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Makes my friends move aside.
4: Makes my friends move aside.
3: The seat is blue in color.
4: The seat is blue in color.
3: The tires and pedals are black.
4: The tires and pedals are black.
3: Sometimes fast. Sometimes slow. But my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving. All I need is some air. I put on my little helmet. And I go happily everywhere. Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find it? Isn't it lovely?
4: Yes, sir. It's lovely.
3: So now, let's listen to a beautiful song on this poem, which is being sung by a lovely little girl, just like you.
11: Just like us.
3: Yes. And you can also hum along with this song while listening to it. Okay?
4: Yes, sir!
3: So here comes the song on bicycle. Listen and enjoy.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
5: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
6: वो तो ठीक है साहब,
5: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
6: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
5: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
6: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
5: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
4: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
7: माँ।
8: अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
7: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
8: हाँ।
7: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
8: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
7: जी।
8: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
7: जानता हूं मां।
8: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
7: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
8: जाओ बेटा।
4: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे।

0: ये तो गया, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट
1: जी,
0: फायर।
2: सर सर, वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
0: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
2: ठीक है सर।
3: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं यह समझ नहीं आ रहा। यह बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन।

0: शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया, जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हमारी कलाकार हैं माधवी लांगड़े, वालियन पर हैं कमल कामले, और तबला संगत है उल्लास राजहंस की।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में माधवी लाड़ंगे को, वायलिन पर थे कमल कामले और तबला संगत थी उल्लास राजहंस की। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: जहां जनगणना के तहत चल रहे प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना के काम सहित 34 बिंदुओं पर जानकारी संकलित की जा रही है। पेश है ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
1: जनगणना के तहत चल रहे प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के काम सहित 34 बिंदुओं में जानकारी संकलित की जा रही है। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य जारी है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने हाल ही में शहर में चल रहे जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी क्षेत्र में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तु स्थिति जानी। साथ ही प्रगणक श्रीमती नीलम राजपूत के साथ न्यू दर्पण कॉलोनी पहुंचकर एक घर की ऑनलाइन गणना कराई। इस अवसर पर SDM अतुल सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने न्यू दर्पण कॉलोनी क्षेत्र की प्रगणक श्रीमती नीलम राजपूत व ब्रजेश द्वारा जनगणना के लिए बनाए गए नजरी नक्शा देखे। साथ ही इस नक्शे के आधार पर अब तक की गई मकानों की गणना की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि गत 1 मई से शुरू हुआ जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। प्रगणकों द्वारा घर घर पहुंचकर मोबाइल ऐप पर निर्धारित प्रपत्र में जनगणना संबंधी 34 बिंदुओं में जानकारी भरी जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की दूसरी खबर है गुना जिले से, जहां पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान युवक युवतियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
2: शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत गुना जिले के पिछड़ा वर्ग के युवाओं को पुलिस, आर्मी सहित सशस्त्र बल की निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में निरीक्षक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग गुना राकेश राठौर ने जानकारी देते हुए आकाशवाणी को बताया।
3: अभी अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने बहुत शानदार योजना प्रोवाइड की है। ये योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों के लिए है। ये एक प्रकार से अवसर उपलब्ध कराया है अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से, जिसमें 100 युवक और 100 युवतियों को ट्रेनिंग करवाई जाना है, जिसमें भोजन की व्यवस्था, रहने खाने और सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ में इसमें 4 घंटे की कोचिंग, 3 घंटे का फिजिकल ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें अभी आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण प्रोग्राम 15 मई 2026 को प्रारंभ होने जा रहा है। ये एक प्रकार से बहुत शानदार अवसर है उन युवा और युवतियों के लिए जो पुलिस, अग्निवीर भर्ती, SSC GD, CRPF और अन्य सैन्य बलों की तैयारी कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है। मेरा सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों से निवेदन है कि इस योजना में आप आए, आवेदन करें और इस योजना का अवश्य लाभ उठाएं। साथ में इस योजना में जो प्रशिक्षणार्थी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, उन युवक युवतियों को एक सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दिया जाएगा, जो काफी लाभकारी आप लोगों के लिए साबित होगा। इसमें योग्यता में ध्यान रखना है कि उन्हीं युवाओं को इसमें मौका मिलेगा जो 12वीं पास कर चुके हैं। योजना मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसमें 1000 रुपए छात्रवृत्ति जो बॉयज है उनको और जो 1100 रुपए छात्रवृत्ति जो गर्ल्स है उनको मिलेगी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
0: हमारी अगली खबर है छतरपुर जिले से, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम जारी है, जिसके लिए जिले में 80 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्लॉट प्रक्रिया के जरिए किसानों से सीधे गेहूं खरीदा जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे से।
4: छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए जिले में 80 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सीधे किसानों से सेवा सहकारी समितियां गेहूं खरीदी कर रही हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारी ने हमें जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में 15 अप्रैल से गेहूँ खरीदी का काम प्रारंभ हो गया था, जो शासन के निर्देशानुसार आगामी 23 मई तक जारी रहेगा। जिले को 8,20,000 क्विंटल गेहूं खरीदी का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध अभी तक 7,24,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके लिए किसानों द्वारा लगातार स्लॉट बुक किए जा रहे हैं। शुरुआती तौर में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई, अब बड़े किसानों के भी स्लॉट बुक हो रहे हैं। सभी खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें छाया पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2585 रुपये प्रति क्विंटल एवं राज्य सरकार का बोनस 40 रुपये प्रति क्विंटल, इस तरीके से 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उनके सीधे बैंक खातों में भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। खरीदी केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो, इसके लिए सतत निगरानी टीमें बनाई गई हैं जो निरीक्षण कर रही हैं। हाल ही में छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिले के घुआरा खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां पर क्वालिटी एफएक्यू की नहीं मिलने पर उन्होंने सर्वेयर को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों से 50 किलो 200 ग्राम प्रति बोरी मानक तौल ही तौलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, खाद्य अधिकारी सभी को सतत निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर से सुनील पांडे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं धार जिले की ओर, जहां जनगणना 2027 के पहले चरण के मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
5: पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी धार जिले में 8वीं जनगणना का शंखनाद 1 मई से हो गया है। जनगणना 2027 के दो चरणों के प्रथम चरण कार्य के तहत मकानों की गणना एवं सूचीकरण का कार्य 30 मई 2026 समयावधि में पूर्ण किया जाना है। भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 के प्रथम चरण के मकान सूचीकरण मकानों की गणना के सफल क्रियान्वयन हेतु धार जिले में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। शासन द्वारा तैयार किए गए विशेष जनगणना रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमारी जनगणना हमारा विकास के संदेश के साथ भ्रमण कर रहे रथ प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर LED स्क्रीन के माध्यम से जनगणना से संबंधित लघु फिल्मों के साथ जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं बैनर, पोस्टर आदि माध्यमों से भी लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नागरिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे प्रगणकों को अपने परिवार, मकान की स्थिति और उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के संबंध में बिल्कुल सही और सटीक जानकारी प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दे। जनगणना पूरी तरह से हाईटेक हो रही है। जनगणना हेतु जिले में 4060 प्रगणक और 658 सुपरवाइजर फील्ड में उतरकर इन ब्लॉकों में मकानों की गिनती कर रहे हैं। इसके पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई डिजिटल स्वगणना के माध्यम से भी हजारों लोगों ने स्वगणना पोर्टल में दर्ज कराई थी। स्वगणना के तहत डेटा और प्रक्रिया की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखे जाने के कारण हजारों लोगों ने घर बैठे आसान तरीके से अपनी जानकारी स्वगणना पोर्टल के में दर्ज करवाई, जिससे अब इन लोगों को प्रगणकों को सिर्फ SID ही देना पड़ रही है। प्रशिक्षण प्राप्त प्रगणक और सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों की गिनती करने के साथ उसमें रह रहे नागरिकों से 33 बिंदुओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गलत जानकारी देने या जानकारी छुपाने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं गत दिनों जनगणना निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर नमित यादव धार पहुंचे और उन्होंने प्रगणकों के कार्य करने के तरीकों को जाना, साथ ही जहां गणना हुई है वहां पर जाकर लोगों को क्रॉस वेरिफिकेशन किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अगली खबर है डिंडौरी जिले से, जहां बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डिंडौरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
6: खेल युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार डिंडौरी जिले में बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का आयोजन 5 मई से 5 जून 2026 तक किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक जिला एवं विकासखंड मुख्यालयों में संचालित किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्तर पर एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एवं कराते सहित 4 अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में 2 खेलों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। खेल प्रशिक्षण के साथ अन्य विभागों के सहयोग से व्यक्तित्व विकास, मोटिवेशनल सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक सहभागिता, साइबर जागरूकता तथा नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: अब हम रुख करते हैं छिंदवाड़ा जिले की तरफ, जहां प्रशासन ने ई विकास प्रणाली के जरिए किसानों को बड़ी सहूलियत दी है। प्रशासन की इस पहल से खाद के लिए केंद्रों पर लगने वाली कतारें कम हो गई हैं और किसानों को सुगमता से खाद उपलब्ध हो रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति।
7: गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की हालिया बैठक में जिले की कृषि प्रगति को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह ने ई विकास प्रणाली की ताकत पर जोर देते हुए इसे किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया है। अब किसानों को खाद के लिए घंटों लाइनों में लगने का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। इस डिजिटल प्रणाली के जरिए किसान घर बैठे अपना ई टोकन बुक कर सकते हैं और अपनी मर्जी के विक्रय केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। शासन के नए निर्देशों के तहत एक बड़ी राहत यह भी मिली है कि किसान अपनी भूमि की पात्रता के अनुसार सभी आवश्यक उर्वरकों की पूरी मात्रा एक ही बार में प्राप्त कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत छिंदवाड़ा जिले में अब तक हुए कामकाज और खाद के स्टॉक को लेकर कृषि विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि
8: छिंदवाड़ा जिले में अभी तक लगभग 18,700 से अधिक किसानों ने ई विकास के माध्यम से ई टोकन बुक करके 6700 मीट्रिक टन से अधिक खाद का उठाव कर लिया है। इस ई विकास प्रणाली के लागू होने से किसानों के लिए बहुत सुविधा होगी, लाइन से निजात मिलेगी और अपनी इच्छा अनुसार वर्ग विक्रय केंद्र का चयन करके वहां से अपनी इच्छा की खाद उठा सकेंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा लगातार जो है जिले में उर्वरक वितरण किया जा रहा है। अभी तक हमारे जिले में 1,00,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है। किसान भाइयों को जितनी आवश्यकता होगी उतनी खाद मिलेगी, लेकिन ई विकास टोकन के माध्यम से ही मिलेगी। हमारी जिले के सभी किसान भाइयों से अपील है कि आप ई टोकन बुक करें और अपनी सुविधा अनुसार जल्दी से जल्दी खाद का उठाव करें।
7: जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। प्रशासन के पास इस समय लगभग 1,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का सुरक्षित भंडार मौजूद है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूरिया, एनपीके और डीएपी का 75,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का स्टॉक जिले में है। इसके अलावा 5,000 मीट्रिक टन पोटास और 19,300 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट भी उपलब्ध है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने भी सभी सहकारी समितियों, मार्कफेड और निजी विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि ई टोकन प्रक्रिया में किसानों को पूरा सहयोग दिया जाए। साथ ही प्रशासन ने किसानों से यह खास अपील की है कि वे सीजन की भारी भीड़ और आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ई टोकन बुक करें और अपनी खाद का उठाव सुनिश्चित करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसमें आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद।
2: सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
4: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ोदरा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सोझों में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आज और कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम है 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले होंगे। 7:20 पर कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी। 8:00 भोपाल से रिले होगा सुर्खियों में। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम होगा 8:15 पर। चित्रगीत का कार्यक्रम सुनेगा 9:15 पर। पब्लिक स्पीक 9:30 पर दिल्ली से रिले होगी। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मन भावन रात 10:00। शास्त्रीय संगीत में सुनेगा पंडित शंभू प्रसाद पंवार को। राग होगा चारू केसी। ये थे आज की सभा के मुख्य कार्यक्रम।

कल यानी 12 मई के मुख्य कार्यक्रम सुन लीजिए। वंदना सुन सकेंगे सुबह 6:05 पर। सुबह 6:30 पर सुनिएगा चिंतन। एआई का खेती में महत्व जानेंगे। खेती की बातें में सुबह 6:35 पर। विज्ञान पत्रिका सुनिएगा 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे प्रेमलता नारमदेव और उनके साथी। कार्यक्रम होगा 9:00। सुगम संगीत में कलाकार होंगे बेगम अख्तर। कार्यक्रम होगा 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा सरोज वादन उस्ताद अमजद अली खां का। राग होगा देसी। कार्यक्रम होगा 9:30 पर। भोपाल से रिले होगा जिले की चिट्ठी 10:00। फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन होगा 10:05 पर। दोपहर 12:00 और 2:00 कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा। संग्रहालय से सुनिएगा 12:30 पर। यह कार्यक्रम भी भोपाल से ही रिले किया जाएगा। 1:00 भोपाल से रिले होगा महिला कार्यक्रम। लोक संगीत का कार्यक्रम भोपाल से रिले किया जाएगा 1:30 पर और भोपाल से ही रिले होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम 1:45 पर। आपकी फरमाइश भोपाल से रिले होगा 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:00। 5:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT होगा 6:00। 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी मोना शेवड़े। 6:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे फतेह सिंह परमार और उनके साथी। किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी। सुर्खियों में 8:00 भोपाल से रिले होगा। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम सुनिएगा 8:15 पर। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशा होगा 9:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मन भावन रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे सितार वादन। रागिनी त्रिवेदी का राग होगा बागेश्वरी। कार्यक्रम होगा 10:30 पर। ये थे कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले।
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव कल, जुटेंगे फ्रांस के प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश पर निवेश में होगा मंथन। देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान। और प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 57। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुनू नेशनल पार्क में विमुक्त किए 2 मादा चीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर गौरवशाली और शाश्वत है और देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक है। श्री मोदी ने आज गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि पवित्र सोमनाथ मंदिर में लहराता ध्वज भारत की आस्था की विजय का प्रतीक है और लाखों भारतीयों की सामूहिक चेतना की दिव्य घोषणा भी है।
1: हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, ये संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार गारंटी का अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। देश भर में नए ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। भोपाल में कल इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में सहभागिता कर वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 के अंतर्गत परम विशिष्ट, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत सुख सुविधाओं एवं कल्याण का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार की राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
2: मैंने पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर के मंजूरी दी है कि हमारे DG पहले 25,000 तक का पुरस्कार दे रहे थे, अब उनको अधिकार 50,000 तक हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से निचले स्तर तक, SP के स्तर तक भी हमारे जवानों को पुरस्कार की राशि डबल करने का निर्णय हमने किया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी पुलिस जो चाहेगी हम करने को तैयार है।
0: भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण, BIS प्रमाणन, खिलौना क्लस्टर स्थापित करना और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना शामिल है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से भारत में निर्मित या आयातित सभी खिलौनों के लिए ISO 8124 मानकों पर आधारित अनिवार्य BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पूरे उद्योग में उच्च सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 1763 करोड़ रुपए की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 973 सड़कों का निर्माण कार्य को मंजूर दी गई। कैबिनेट ने कुल 29,540 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। सहकारिता मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम तेल खाने, ईंधन की बचत करने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। खरगोन में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सारंग ने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध जैसे हालातों के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और ईंधन पर असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि तेल की खपत कम होगी तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फिजूल खर्ची वाले आयोजनों से बचने की भी अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगरमालवा जिले के स्वायत्त कला में जल संरक्षण का संदेश देने हेतु कल एक विशाल भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई। नीमच जिले के जावत में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन अभियान परिषद जावत द्वारा संवानिया महाराज स्थित बालाजी मंदिर रामघाट पर जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में भी 23 मई तक गेहूं खरीदी होगी। कलेक्टर ने किसानों की स्वीकृति लंबित न करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर में आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा आज जिला जेल में दिव्यांगजन कैंप का आयोजन किया गया और सीहोर कलेक्टर बाला गुरु के ने आज जनगणना कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में जनगणना कार्यों में गति लाने के सख्त निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी?
2: हाँ।
1: नए झुमके? ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
6: बेटा,
7: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
6: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
6: चलो,
5: कहाँ
6: एडमिशन कराने?
8: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
9: अरे, और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
7: पर दादी, आपके नाम?
10: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
9: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

बच्चों जन्म लेवे है, तो जब हमारे सबसे पहना यूज लगी कि भाई वो स्वस्थ है कि नहीं है, उनके कहीं परेशानी तो नहीं है, और यह सब जो बात ना है, इन सब का सारू उनकी माँ की सुरक्षा जरूरी है, उनके स्वस्थ रहना जरूरी है। हमारे देश में जब भी कोई हमारी बहन गर्भवती होए तो उकी सुरक्षा को कई बार माना कितना अच्छा से ख्याल नहीं रखी सके, उका में कई बात ना आवे, जैसे कई बार यो भी रहे कि भाई गरीबी, पैसा की कमी, फिर जागरूकता की कमी, कई बार कई बात ना पतोज नहीं रहे, या बात ना भी रहे कि भाई इका से हम, और कोई कोई तो है कि टाली देवे कि भाई और ठीक है सब अच्छा से हुई रही है, यो देखी के और हमारी जो गर्भवती बहना है उनकी सुरक्षा नहीं हुई सके है। और इन्हीं सब परेशानी से बचना का सारू हमारी सरकार जो है उनने 12 अप्रैल 2005 के जननी सुरक्षा योजना शुरू करी थी। यह योजना जो है एक स्वास्थ्य योजना है और इको उद्देश्य गर्भवती महिलाना और नवजात शिशुना की मृत्यु दर के कम करना है। विभिन्न और यह योजना विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण अन कमजोर वर्ग की जो महिलाना रहे उनके सुरक्षित प्रसव कराना, उनकी मातृत्व सेवा का सारू शुरू करी थी। और इका पहला नरी बहन और घर पे जो देखो भाई, पहले अपन ने देखी हो कई बार घर पे जो प्रसव हुई जाता तो पहला कहीं व्यक्ति बात ना नहीं रहती थी और ये सब असुरक्षित परिस्थिति रहती थी, क्योंकि जब जो दाई माँ से प्रसव कराना है नहीं, उका में कई बार हमारा नवजात बच्चा की मृत्यु हुई जाए, कई बार हमारी बहन और की मृत्यु हुई जाती थी, यह सब जो बात ना होती थी उको कारण योज तो कि भाई जब असुरक्षित परिस्थिति में प्रसव होते तो यह सब परेशानियाँ आती थी, और उका में बच्चा न माँ दोनों के खतरों भी रहते थे। इन्हीं सभी समस्या के ध्यान में रखी ने सरकार ने अस्पताल में प्रसव का सारू जो है आर्थिक सहायता देने शुरू करी, और वह जो सहायता है यो निर्णय जब लियो तो यह है जननी सुरक्षा योजना का माध्यम से ज मिले है। जब गर्भवती वाली बहन और रेवे वह अपनो जो है सरकारी अस्पताल में अपनो नाम लिखावे और उका बादेज उनके इन योजना को लाभ मिल सके। विभिन्न और यह योजना को लाभ लेना का सारू सबसे पहला तो ये जरूरी कि हम भारत का नागरिक होए, उका बादे हमारी जो गर्भवती बहन है वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति की होए या भी चले जाए, और ये सभी वर्ग की महिला ना कदी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली होए, इनको लाभ ये सब महिला ना हमारी उठाई सके है। भाई बहन और इससे हमारी ग्रामीण अन गरीब बहन और को प्रसव जो है वो उस अस्पताल में सुरक्षित तरीका से हुई सके है, और हम कहीं ना कहीं हमारी जननी जो है उसकी सुरक्षा कर रहा, लेकिन हमारा देश का आने वाला भविष्य हमारा नवजात शिशुना की भी सुरक्षा इका चलते हम कर रहा। तो भाई बहन और या तो थी जननी सुरक्षा योजना जो कि हमारा यहाँ पर गरीब हमारी बहना का सारू हमारी सरकार ने शुरू करी है। अपनी बातचीत अपन और भी करांगा, अभी सुना यो बनी गीत।

0: हमने यो रेखा सोलंकी को गायो बणी गीत सुनियो। इका साथ ज अब अपनो कार्यक्रम जो है इका में जानकारी ना हम भरपूर लावा हाँ और कोई ना कोई जानकारी ऐसी रहे कि जो कि खास करके हमारा कई बार कहीं होए कि हमारा भाई जो किसान भाई बहन रहे हुए उनके कई याद भी रहे फिर भी हम कई बार भूली जावा हाँ जिससे कि जैसे हम कार्यक्रम में सुना तो हमारे याद पाछी याद ही जाए। ऐसे ही आज हमारा पास एक स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित वार्ता है जो कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर से है जिका मैं हमारे डॉक्टर संजीव जो है वो वैज्ञानिक का पद पे पदस्थ है वहाँ पे और भी हमारे बताई दिया है कि सोयाबीन की फसल में रोग प्रबंधन कैसे करना। तो चलो सुनाया वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है और मैं राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ और जो मेरा रिसर्च का जो विषय है वो पादप रोग विज्ञान है। तो आज हम सोयाबीन में लगने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर सोयाबीन में बीमारियों की बात करें तो मुख्यतः 4 से 5 तरह की बीमारियाँ आती हैं और इन बीमारियों से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि जो 2-3 बीमारियाँ हैं जो नवजात पौधों में लगती हैं जिन

को हम बोलते हैं, एक तो जड़ सड़न की बीमारी है, दूसरा कॉलर रॉट है। अब ये जो बीमारियां हैं इनसे निदान पाने का एक ही समस्या है, एक ही समाधान है, बीजोपचार। बीजोपचार की जो प्रक्रिया है सोयाबीन में बहुत महत्वपूर्ण है, और जब भी हम बीजोपचार करें तो FIR की जो पद्धति है उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। FIR का मतलब हुआ फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या राइजोबियम कल्चर, यानी कि फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम। आजकल बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिसमें कि फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड पहले से मिला रहता है, पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं, जैसे कि थायमेथोक्सैम प्लस एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनेट मिथाइल, ये दवाई है और ये मार्केट में आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगी। इसकी जो मात्रा है जो बीजोपचार के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है 10 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। तो इन दवाइयों को हम बीजोपचार करके जो नवजात पौधों में जो बीमारियां लगती हैं उनसे निदान पा सकते हैं। साथ ही साथ जब जो फसल है हमारी 35 से 40 दिन की हो जाती है तब जाके बीमारियों का अटैक होता है, जैसे कि पॉड ब्लाइट बोलते हैं, यानी कि फली झुलसन, एरियल ब्लाइट की समस्या आती है और जो पीला मोजाइक है। तो ये 3 प्रमुख रोग हैं सोयाबीन में। तो ये जो फली झुलसन की बीमारी है इसमें फलियाँ काली पड़ जाती हैं और जो दाने हैं वो छोटे रह जाते हैं, और ये जो समस्या है मतलब जो इसका शुरुआती लक्षण है वो आपको 35 40 दिन पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इस समय जो दवाइयाँ हैं अगर उसका हम सही से प्रयोग करें तो इनसे निदान पाया जा सकता है। और जो प्रमुख दवाइयाँ हैं जैसे कि टाबेकोनाजोल है, उसकी मात्रा 625 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ टाबेकोनाजोल प्लस सल्फर है, उसकी मात्रा 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। फिर एक और बीमारी आती है पीला मोजाइक। पीला मोजाइक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मोजाइक यानी पच्चीकारी, तो जो पत्तियां रहती हैं उस पर धब्बा बन जाता है, हरे कलर का और पीले कलर का धब्बा बन जाता है, और ऐसी जो बीमारियां हैं सफ़ेद मक्खी से फैलती हैं। तो अगर हमें इस बीमारी से निदान पाना है तो सफ़ेद मक्खी की जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसके लिए जो जो दवाई है जो कि बाज़ार में मतलब मिल जाएगी आपको, वो है थायमेथोक्सैम प्लस लेमडा साइलोथ्रिन। ये बहुत अच्छी दवाई है और इसको आप 1 महीने के पश्चात आप स्प्रे कर सकते हैं, और इसकी जो मात्रा है 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। साथ ही साथ ध्यान यह देना है कि जो दवाई की जो जो दवाइयां हैं अगर उनके हमें छिड़काव करना है तो मुख्यतः 35 से 40 दिन पे एक छिड़काव हम करेंगे, और जो दूसरा छिड़काव है 60 दिन पे करना आवश्यक है। ये दोनों छिड़काव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीमारियां जो हैं 35 से 40 दिन पे आनी शुरू हो जाती हैं, और सही समय पे अगर हमने सही दवाई का प्रयोग किया तो बीमारी को रोका जा सकता है, बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ ही सोयाबीन में एक और प्रमुख बीमारी है जिसको हम बोलते हैं एरियल ब्लाइट, और ये जो बीमारी है विगत वर्षों में इससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और ये जो बीमारी है इसके पहचानने के लक्षण ये हैं कि जो पत्तियाँ रहती हैं उस पर एक कोने से भूरापन आएगा, जिसे कि हम बोलते हैं जलदाग। जो जलदाग की समस्या है वो इसके मतलब प्रमुख लक्षण है, और इस टाइम अगर हम दवाई का स्प्रे करें तो इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमने सही दवाई और सही समय पे छिड़काव नहीं किया तो बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जैसा कि कई बार खेतों में देखा जाता है कि जो फसल रहती है वो अचानक से झुलस जाती है और 1 से 2 दिन में विल्टिंग आ जाती है। तो वो जो समस्या है एरियल ब्लाइट के कारण है, और इस बीमारी से निदान पाने के लिए जो दवाई है उसका जो छिड़काव आप कर सकते हैं वो 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और जो दवाई है वो फ्लिगजो पायरोक्साइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन है। देखिए सोयाबीन की जो समस्या है बीमारियों की, तो दवाई के साथ साथ कुछ अन्य पहलू हैं जिन पे हमें जोर देना पड़ेगा, जिसमें कि प्रमुख है रेजिस्टेंट वैरायटी। जो पुरानी वैरायटियाँ थी उनकी सहनशीलता जो है ख़त्म हो गई है, उनमें बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, खासकर जो 95-60 है, तो ऐसी वैरायटी को आप छोड़ दें। इन अवधि में और अन्य अवधि में भी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ आजकल आ चुकी हैं, जैसे कि NRC 142 है, NRC 150 है, NRC 268 है, NRC 270 है, साथ ही साथ JS 2172, JS 2212, 2216, ये सब अन्य अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं जो आजकल आ गई हैं, और इनको आप प्रयोग में लेंगे तो इनमें बीमारियाँ बहुत कम अटैक करती हैं। इससे क्या होगा कि जो उत्पादन है या जो उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, बीमारियों का अटैक कम होगा, और जो लागत मूल्य है उसे बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिल जाएगा। साथ ही साथ कभी भी जब आप वैरायटी सिलेक्शन करते हैं, किस्मों का चयन करते हैं, तो एक ही किस्मों का चयन ना करें,
कम से कम दो किस्मों का चयन करें, एक जल्दी पकने वाली और एक मध्यम पकने वाली या ज़्यादा पकने वाली। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए मौसम बदलाव के कारण अगर कोई वैरायटी हमारी अगर फेल हो भी जाती है

0: तो मध्यम अवधि की जो वैरायटी है उसमें आपको यील्ड मिल जाएगा और लागत जो है लागत मूल्य कम से कम आ जाएगी। तो ये मुख्यतः तीन चार बातें थी जिसमें हमने बीमारियों के बारे में बताया, कौन सी वैरायटी है, कौन सी दवाइयां हैं जिसको हम प्रयोग में लें। आप इन चीजों को फॉलो करें तो निश्चित ही जो सोयाबीन में जो लगने वाली बीमारियां हैं उनसे निजात पाया जा सकेगा। धन्यवाद।
1: और हमने यह स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित वार्ता सुनी जिका मैं हमारे जानकारी दिया था डॉक्टर संजीव कुमार जो कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक का पद पे पदस्थ है। अब इका साथे ज अपना कार्यक्रम की जो बात खास बात रहे वह रहे लोकगीत कि भाई मनोरंजन भी करता चला और कोई ना कोई जानकारी भी लेता चला। तो उन्हीं मनोरंजन का तहत अब अपन सुना स्वाति उखले अन्न साथी ना को गायो यो लोकगीत।
2: किसान भाइयों,

हमने स्वाति उखले अणसाथी ना को गायो यो लोकगीत सुनियो। अब भाई बहनों आज है 11 मई को दंड और आज को दंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का रूप में भी मनायो जावे क्योंकि इसकी शुरुआत 11 मई 1999 से हुई थी। जिको उद्देश्य यो दंड मनाना को थो कि भारत के वैज्ञानिक अण तकनीकी उपलब्धि ना जो रेवे उनको सम्मान करनो उनके सम्मान देनो इका सारू इना दिन के मनायो जावे है। इको यो भी उद्देश्य है कि विशेष रूप से युवा अण दूसरा मनक ना जो रहे उनके विज्ञान अण तकनीक का क्षेत्र में आगे बढ़ाना का सारू प्रेरित करनो। इना दंड हमारा देश की और भी तकनीकी उपलब्धि ना के याद करियो जावे है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमारे यो संदेश भी देवे कि कोई भी देश की प्रगति विज्ञान अण तकनीक पे निर्भर करे है। कदी हमारा भारत का विकसित राष्ट्र बनानो है तो हमारे अनुसंधान नवाचार और तकनीकी शिक्षा इके बढ़ावो देनो जरूरी है। युवा ना के कई खोज का सारू प्रेरित करनो पड़ेगो और यो दंड जो है वो भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि ना का सारू गर्व करना को और भविष्य में नई ऊंचाई ना के छूना को संकल्प लेना को दंड है। तो भाई बहनों आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है जी की शुभकामना मैं तुम्हारे आकाशवाणी परिवार की ओर से भी दूं। अब इका साथे तुम्हारे इंतजार होएगो कि आज अनाज का भाव कह रिया तो हमारा कने कृषि उपज मंडी समिति संयोगिता कंज प्रांगण इंदौर से जो आज का अनाज का भाव आया है वी भी जानीला। उड़द इकी आवक री 3 क्विंटल और भाव रियो 3710 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग की आवक री 184 क्विंटल भाव रियो 4100 रुपया से 7775 रुपया प्रति क्विंटल। इमली की आवक री 183 क्विंटल भाव रियो 2900 रुपया से 9300 रुपया प्रति क्विंटल। राजमा की आवक री 83 क्विंटल और भाव रियो 1400 रुपया से 8580 रुपया प्रति क्विंटल। मिर्ची की आवक री 239 क्विंटल भाव रियो 9010 रुपया से 15500 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों की आवक री 2 क्विंटल भाव रियो 5005 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना की आवक री 3815 क्विंटल और भाव रियो 6000 रुपया से 9105 रुपया प्रति क्विंटल। धनिया की आवक री 15 क्विंटल भाव रियो 11800 रुपया से 12910 रुपया प्रति क्विंटल। अरहर तुअर की आवक री 30 क्विंटल और भाव रियो 6305 रुपया से 6680 रुपया प्रति क्विंटल। चना की आवक री 585 क्विंटल भाव रियो 4500 रुपया से 6980 रुपया प्रति क्विंटल। मसूर की आवक री 2 क्विंटल और भाव रियो 5005 रुपया प्रति क्विंटल। ऐसे मक्का की आवक री 21 क्विंटल भाव रियो 1710 रुपया से 1886 रुपया प्रति क्विंटल। मटर की आवक री 96 क्विंटल और भाव रियो 3175 रुपया से 3870 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं की आवक री 3895 क्विंटल

0: और यो 2,100 रुपया से 2,703 रुपया प्रति क्विंटल। ज्वार की आवक रही 65 क्विंटल, भाव रियो 2,296 रुपया से 2,362 रुपया प्रति क्विंटल। और सोयाबीन की आवक रही 667 क्विंटल, भाव रियो 4,200 रुपया से 7,025 रुपया प्रति क्विंटल। अमचूर की आवक रही 10 क्विंटल, भाव रियो 4,200 रुपया से 6,300 रुपया प्रति क्विंटल। और मेथी दाना की आवक रही 3 क्विंटल, भाव रियो 4,755 रुपया से 5,095 रुपया प्रति क्विंटल। तो भाई बहनों, और ये तो था कृषि उपज मंडी समिति सहयोगितागंज प्रांगण द्वारा भेजा गया आज का अनाज का भाव। अब इका साथेज अपना कार्यक्रम के अपन आगे बढ़ावा, और आज अपन एक कविता पाठ सुनांगा जो कि नितेश जोगी ने का द्वारा जी को पाठन कियो है, जो बड़नगर जिला उज्जैन से है। तो चलो सुना यो पर कविता पाठ।
1: किसान भाइयों, राम राम। मैं नितेश जोशी आपका पास वाले ही शहर बड़नगर से आज आपके सामने कुछ कविताएं लेकर आया हूं। मेरी पहली कविता है लड़की पढ़ना चाहती है। लड़की पढ़ना चाहती है, समाज में अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। हाँ, लड़की पढ़ना चाहती है, लड़ना उसकी नियति है, पर वो उस नियति से भी आगे बढ़ जाना चाहती है। कोख से बाहर आने के लिए भी जिसे बार बार मिटाने के प्रयास हुए, वो उन सब प्रयासों को खत्म कर देना चाहती है। लड़की पढ़ना चाहती है, अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। लड़की पढ़ना चाहती है। लड़कों के खिलौने से, कपड़ों से और मिले हुए प्यार से वंचित नहीं रहकर वो भी अपना बचपन भरपूर जीना चाहती है। लड़की पढ़ना चाहती है, अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। लड़की पढ़ना चाहती है। जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते लड़कों के लिए, बुजुर्गों को तिरस्कार से देखते लड़कों के लिए, घर पर बोझ बने उन लड़कों के लिए, और सरेआम इज्जत को ठुकराते लड़कों के लिए, वो एक जवाब बनना चाहती है। लड़की पढ़ना चाहती है, समाज से अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। लड़की पढ़ना चाहती है। वो घर पर बोझ नहीं है, समाज की आधी आवाज है वो। घर और दुकान दोनों की जिम्मेदारी उठाना चाहती है। वो गाड़ी का दूसरा नहीं, पहला पहिया बनना चाहती है। लड़की पढ़ना चाहती है, अपनी पहचान, अपनी जगह और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहती है। लड़की पढ़ना चाहती है। मेरी दूसरी कविता है माँ के जाने के बाद। माँ, तुम्हारे जाने के बाद घर का वो कोना अब सुनसान पड़ा है, जहां कभी बच्चे चॉकलेट के लालच में खिल खिलाते हुए दौड़ आया करते थे। धूप का गुनगुनाता टुकड़ा अब खिड़की से भीतर आता है, फिर लौट जाता है, क्योंकि उसे अब नहीं मिलती तुम्हारी परिचित गंध। वो अपनापन जो तुम्हारी सांसों से पूरे घर में बिखरा रहता था। गिलहरी का वो जोड़ा भी कुर्सी के इर्द गिर्द चक्कर काटकर लौट जाता है। उसे अब नहीं मिलते तुम्हारे हाथों से बिखेरे गए चावल के दाने। गमले के पास बनी चींटियों की बांबी भी अब वीरान है, कोई आटा नहीं छिड़कता वहां पर। घर के दरवाजे पर आई हुई गाय भी बिना रोटी के चुपचाप लौट जाती है। सुबह की वो आरती, सांझ की रामायण की चौपाई, घंटियों की धुन, सब के सब जैसे इस घर से काफूर हो गई है। बूढ़ी महरी और दूध वाला रामू काका भी अब बस काम करके लौट जाते हैं, क्योंकि अब कोई नहीं सुनता उनके दुख सुख की बातें।

0: आंगन की तुलसी जिसे तुम हर दिन जल और अगरबत्ती से पूछती थी अब सूख कर खामोश खड़ी है और बंटी ने उसकी दीवारों को क्रिकेट का स्टंप बना डाला है। पड़ोस वाली पुष्पा भी अब तुम्हारी चौखट पर नहीं रुकती, ससुराल से आकर सीधे लौट जाती है, उसके आने जाने का किसी को एहसास तक नहीं होता। मां, तुम्हारे जाने के बाद इस घर से सिर्फ तुम नहीं गई, तुम्हारे साथ घर की हंसी, अपनापन, रिश्तों की गर्माहट और जीवन का संगीत भी चला गया। मेरी तीसरी कविता है मेरा घर। जब मेरा घर मेरी दादी का घर हुआ करता था, हमारे आंगन में एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे खेलते थे गांव के सारे बच्चे। वहीं दादी बांधा करती थी एक गाय जिसकी छोटी सी बछिया को हम दिन भर खिलाया करते थे। दादी के घर में कमाई भले ही कम थी पर फिर भी बन जाता था मेहमानों की आवभगत का भोजन। निकल आती थी गाय के लिए रोटी, चींटियों के लिए आटा, चिड़ियों के लिए चावल, बिल्ली के लिए दूध और देहरी पर आए भिखारी के लिए रोटी और एक सिक्का। अब मेरा घर मेरे पापा का घर है, जहां पेड़ की जगह पक्का आंगन बन गया है, जहां गर्मियों में हम भाई बहन बिस्तर डालकर सोया करते थे। गाय अब नहीं है घर में, कमाई पहले से ज्यादा है पर अब घर में न चिड़िया आती है, न चीटियां, न बिल्ली, न गाय। भिखारी की रोटी की जगह अब सिर्फ नगद ने ले ली है। अब मेरा घर है। आंगन में खुल गई है कुछ दुकानें, घर ऊपर हो गया है, किराए और नौकरी की सीढ़ियों पर टिका हुआ। पैसे बहुत हैं पर फिर भी मेरे घर में अब न चिड़िया आती है, न चीटियां, न बिल्ली, न गाय, न भिखारी। मैं चाहे कितना भी कमा लूं पर दादी जितना अमीर कभी नहीं बन पाऊंगा। पुरखों का लगाया पेड़ कट गया, नई पीढ़ी को रास्ता देने के लिए बीच से हट गया। ऐसे ही हट जाती है हर बेड़ियां जो आती है युवाओं के रास्ते में, जो कभी संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों के नाम से सालों से बोई जा रही थी पुरखों के द्वारा। उन बेड़ियों को भी हटा दिया जाता है, कभी अशिक्षित, कभी पुरानी मानसिकता या दकियानुसी कहकर। टांग दी जाती है बुजुर्गों की सीख, उनके आदर्श, उनके संस्कार, जैसे टंग जाती है तस्वीर उनकी दीवारों पर उनके जाने के बाद। सोचो, सोचो, खूब सोचो। आपके सामने अगली कविता प्रस्तुत है। सोचो, सोचो, खूब सोचो, उनके बारे में सोचो जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सोचो उनकी बातों को, सोचो जिनकी बातें तुमसे शुरू होकर तुम पे ही खत्म हो जाती है। सोचो उन पलों के बारे में, सोचो उन बातों के बारे में, सोचो क्योंकि तुम्हारी सोच पर ही किसी की जिंदगी टिकी हुई है। सोचो, सोचो, खूब सोचो।
1: भाई बहनों, और हमने नितेश जोशी की को कविता पाठ सुनियो जो कि बड़नगर जिला उज्जैन से था। अब इका साथेज आज हमारी ग्राम लक्ष्मी को कार्यक्रम है, तो इका में हमारे जो है घरेलू व्यंजन और घरेलू नुस्खा के पे भी बातचीत करी ला। तो घरेलू व्यंजन में हम आज जैसे कि हमारा बच्चाना का सारू जो नाश्तो बनावा हाँ उका में वो उनके नुकसान भी नहीं देवे, ऐसे मूंग का चिल्ड़ा बनावा। मूंग की दाल गलई ने और बड़ी आसानी से हम उनके मूंग की दाल गलई भिगोई दें, उका बाद उके पीसी ने और उका में अदरक लहसुन को पेस्ट, बच्चाना लौकी नहीं खावे वो किसी के नाखी दो, साथेज पालक का पत्ता थोड़ा घना रखी दो, बच्चाना के पतो भी नहीं चलेगो, और नमक मिर्ची अपनी स्वादानुसार करी के और उको अच्छा से एक उको घोल बना लेनो, और फिर उका बिल्कुल एक पहला बार की तवा पे अपन कदी दो तीन बूंद तेल लगाना भी पड़े तो बस उका बादे हमारे तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़े। तो बिना तेल का स्वास्थ्य का सारू भी अच्छा रहे, ऐसा मूंग का चिल्ला बचाना के हम हरा धनिया की चटनी का साथ खिले सका। हाँ, ऐसे ज आज अपना घरेलू नुस्खा में अपन जानांगा गिलोय का फ़ायदा। तो गिलोय जो है वो भी हमारा एक ऐसा पौधो है जिका से हम बहुत सारा लाभ ली सका। हाँ, तो गिलोय को कभी काढ़ो बनाई के पीवा, साथ चावा तो हम उको सूखो सूखी पत्ती ना को पाउडर भी है उके फाकी के और उके गर्म पानी से पीना तो का से इम्यूनिटी हमारा शरीर में बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बोले रोग ना से लड़ने की क्षमता बढ़ी जाए, पाचन तंत्र में अच्छो हो, जो हमारा ब्लड शुगर यानी कि हमारे शक्कर की बीमारी जो रेवे उका में फ़ायदों मिले, ऐसा नरा सारा हमारी जो चमड़ी है उका से संबंधित रोग में भी हमारे इकमा में फ़ायदों देवे है। साथ ही जो कभी हम बस यो ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे कोई भी चीज़ अति नहीं करनी है, थोड़ो घणो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एको उपयोग नहीं करना है। अब इका साथ चलते चलते तुम्हारे भाई हमारी घड़ी भी इशारों कर ही रही है कि तुमसे अनुमति लेने की बखत आई गई है। मारे दो अनुमति, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुर्खियों में भोपाल से अनुप्रसारित होगा, प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम सोमनाथ, अमृत पर्व, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मोरी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार
1: सतीश जी। जैसा कि हम जानते हैं, आज सोमनाथ अमृत पर्व का अवसर था और प्रधानमंत्री ने इस पर्व में भाग लिया, जलाभिषेक किया और उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक संबोधन भी दिया इस अवसर के महत्व को लेकर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सो सतीश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इंगित किया कि ये प्राचीन मंदिर है और ये पहले भी बहुत चुनौतियों से गुजर चुका है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका अभी तक इतने गौरवपूर्ण रूप में खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।
2: ये देखा जाए तो सोमनाथ पे बार बार हमला हुआ था पहले, ये 1000 साल पहले भी बार बार हमला हुआ और सोमनाथ टेम्पल को धराशायी किया गया। बाद में ये भारत की आजादी के टाइम से ये सोमनाथ टेम्पल को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी ने उसका शिलान्यास किया और ये शिलान्यास करते करते मंदिर का बांधकाम आगे बढ़ा। 1994-95 में हमारे राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी ने नृत्य मंडप का भी लोकार्पण किया और उसके पे कलश लगाने की जो बात थी उसको कलश लगाया और ऐसे पवित्र जो लोग थे उन्होंने उसमें साथ दे के ये सोमनाथ मंदिर का अभी तक में निर्माण पूरा कर दिया है। और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्र लेवल पे सब एक जुट रहे लोग उसके लिए का एक सेंटर बनाना चाहते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसा दिखाना चाहते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट पे जब हमला होता था तब हमीर जी गोहिल की भी शहादत हुई थी, बाद में आजादी के बाद अहल्याबाई होलकर और गायकवाड़ जी सबने अपना योगदान देके मंदिर बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद अभी जो जामनगर के राजवी है जाम साहब, उसके जो वंशज है वो भी उनके प्रमुख रहे हैं और उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे कन्हैयालाल मुंशी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या जाम साहब हो या गायकवाड़ हो, उन सब ने अपना योगदान देके ये मंदिर को अभी तक का जो स्वरूप बना है वो भव्य स्वरूप बनाने में अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। अभी तो ये अथॉरिटी भी एक बना दी है मंदिर के लिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो जो लीगल है उसको भी सोमनाथ ट्रस्ट में लेके उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि एक धार्मिक स्थान के साथ साथ प्रवास के लिए भी एक स्थान बने, उसके लिए भी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने कोशिश की है। 3 साल पहले भी सोमनाथ तमिल संगम करके तमिल से लोग आए थे और 5000 से ज्यादा लोग तमिल से आए थे और सोमनाथ तमिल संगम करके एक उत्सव किया था
1: जी।
2: ऐसे हर साल में कोई ना कोई अलग अलग उत्सव होता रहता है और लोग ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ मंदिर के प्रति जुड़ते जा रहे हैं और उसमें शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, तो ये सब चीज प्रवासी लोग आके देखते हैं। अभी उसमें एक और जोड़ दिया है कि सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, मीन्स ये शो भी होगा, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उसके लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं।
1: सो आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रेरणात्मक धर्म स्थल होते हैं, जैसे अभी स्वाभिमान पर्व भी हुआ था, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्योंकि 1000 साल हुए थे जो पहला रिकॉर्डेड अटैक है महमूद गजनी का इस स्थल पर उसको, तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि कई बार इसका विध्वंस हुआ, लेकिन सबने मिलकर, श्रद्धालुओं ने, राजाओं ने आगे आकर उसका पुनर्निर्माण किया और ये साइकिल कई बार रिपीट हुई। सो आपको लगता है कि बार बार विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भारतीयों की सामूहिक चेतना से कभी भी लोप नहीं हुआ, ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये हमेशा रही, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो देश है उसकी एकता के लिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती है,
2: देश के कोने कोने से लोग आ पाए, अलग अलग वहीं पे जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा जा रही है, और वहीं एक पूरा जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है इस टाइप का एक सीशोर पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहीं नेचर के साथ भी डेवलपमेंट हो रहा है, और लोग जो सोमनाथ आते हैं नजदीक में जो लायन सेंचुरी है उसका भी विजिट करते हैं, कई लोग सोमनाथ के साथ द्वारका का भी दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि जितना सोमनाथ पुराना है ऐसे द्वारका नगरी भी पुरानी है, मीन्स हमारी विरासत है भारतीयों की, तो उसके साथ जुड़ते हैं और लोग धार्मिकता के साथ प्रवास का भी आनंद लेते हैं और बहुत से लोग जुड़ते हैं। इसमें अभी जो ये लाइट साउंड हो रहा है या ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं, इससे यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि सोमनाथ मंदिर की आरती उनकी वेबसाइट पे डेली लाइव होती है, वो भी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ये सोमनाथ मंदिर की आरती लाइव लोग घर पे देख पाए, इसलिए भी इंतजाम उन्होंने किया है, तो विदेश में बैठे लोग भी सोमनाथ का दर्शन कर पाए, इसलिए भी प्रधानमंत्री का विजन था तो ये भी किया हुआ है।
1: जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो ये सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो आध्यात्मिक एकता है उसका कितना बड़ा प्रतीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है, मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है, मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है, मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: सो जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाश में सृजन कैसे होता है, असत्य में सत्य की जीत कैसे होती है, बहुत सारी प्रेरणात्मक यहाँ से हमें सीख मिलती है। आपको लगता है ऐसा पर्व जब होता है स्वाभिमान पर्व या सोमनाथ अमृत पर्व और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, गौरव उत्पन्न होता है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें?
2: डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये लोग कुछ लोग आध्यात्मिक हिसाब से वहीं विजिट करते हैं, कुछ लोग एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से विजिट करते हैं, कुछ लोग ये सी शोर है इसलिए भी आना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग एंगल से लोग आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पर्व हो रहा है, अलग अलग उत्सव हो रहा है, जब महाशिवरात्रि होती है तब भी सोमनाथ का बहुत महत्व है और उसका जो शिवरात्रि की रात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहीं लाखों की मेदनी इकट्ठी होती है और सोमनाथ में अपना पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा साल में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग उत्सव के टाइम पे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं और आते रहते हैं।
1: तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भी स्रोत होते हैं जब ऐसे तीर्थ स्थलों को, धर्म स्थलों को डेवलप किया जाता है। और जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, 97 लाख श्रद्धालुओं से अधिक हर वर्ष यहाँ आते हैं, और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है जिसमें वंदे भारत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है, ये आपको लगता है ये पूरे आर्थिक विकास के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है?
2: बहुत सही बात है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं तो इसके हिसाब से जो आनुषंगिक जो व्यवसाय है सब टूरिस्ट के बेस पे, तो आनुषंगिक व्यवसाय भी बढ़ता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये सब हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बहुत मायने रखता है। और पहले सोमनाथ आज से 10-15-20-25 साल पहले देखो तो सिर्फ दर्शन का स्टेशन था, पहले ऐसा ही मानते थे कि दर्शन के लिए जाना है। अभी वहीं अलग अलग एक्टिविटी इतनी शुरू हो गई है कि लोग दर्शन के अलावा भी अपना आनंद प्रमोद के लिए जा सकते हैं और वहीं रुकते हैं। पहले 2-4 होटल थी, अभी तो इतनी होटल भी हो गई है, इतनी धर्मशालाएं हो गई है, अलग अलग ट्रस्ट के भी बिल्डिंग बन गए है, तो लोग आके रहते, अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा जा रही है। जैसे आपने बोला वंदे भारत, सोमनाथ में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी, वो अभी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसके हिसाब से ज्यादा ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो गई है, और पास में ही केशोद एयरपोर्ट है, दीव का एयरपोर्ट है, उसकी भी फैसिलिटी मिल रही है, तो इस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा इजिली वहीं अप्रोच करके जा सकते हैं।
1: जी, और एक और चीज जो आज प्रधानमंत्री ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया, वो उन्होंने कहा कि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जो परमाणु शक्ति है उसको दर्शाने के दृष्टिकोण से भी। आइए सुनते हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है जो शक्ति के प्रतीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, जिसका एक सिंबल सोमनाथ टेम्पल भी है, और जो उनका एक हमेशा से वर्तमान सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, विरासत भी विकास भी। आपको लगता है ये भी बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है, एक तरफ हम विरासत को पूरा उसका संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं जैसा ये महोत्सव इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ विकास वो चाहे एकदम एडवांस्ड फील्ड में हो, एटॉमिक पावर में हो, शक्ति हमारी जो है वो किसी भी और देश से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है, तो इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं?
2: देखो, सोमनाथ को शक्ति केंद्र भी बोला जाता है
1: जी।
2: वहीं लोग आते हैं, वो अपना मन की शांति लेते हैं, आध्यात्मिक विचारों की उन्नति होती है, और लोग जहाँ शक्ति केंद्र में आते हैं वहीं से एक अलग चेतना लेके जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं आगे जाके और तरक्की करूंगा, इधर मैंने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया है, तो एक अपने आस्था का भी केंद्र है। इस हिसाब से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और धार्मिक स्थल है, उसमें सोमनाथ का महत्व अलग ही है, वो भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसलिए भी लोग 12 ज्योतिर्लिंग को जाते हैं तो पहले सोमनाथ आते हैं और दर्शन करते हैं, तो इस रूप से भी बहुत महत्व सोमनाथ का बनता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बारीकी से बताया कि क्या महत्व है जो सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है उसका पूरे देश के लिए, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
0: सुर्खियों में।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिसे देखा नहीं उसने दिखा दी सारी दुनिया, जिससे मिले नहीं उसने बसा दी दुनिया। बिन देखे उसके पास आने का एहसास, करता है बेचैन मुझे हर रात। होश कहाँ रहता है मुझे, दिल कहता है प्यार हुआ है मुझे। मन उसी ओर जाता है, खुद ब खुद कदम बढ़ जाते हैं प्यार की दुनिया में। दिल की आवाज़ कुछ यूं आती है कि होठों पे ये नगमा लाती है। बड़े अरमानों से रखा है बलम, तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम।

पत्थर तराश के मैं मूरत नहीं बनाऊंगा, पूजा करूंगा उसकी, गीत उसी के गाऊंगा। ये मूरत मेरे मन की है, ये सूरत मेरे दिल की है, तराशा है क्या अब ये दिखलाऊंगा, पूजा करूंगा उसकी, गीत उसी के गाऊंगा। पत्थर जो मैंने देखा, जाने क्यों दिल मेरा धड़का, सोचा सीने से लगा लूं ये भी पिघल जाएगा, फिर दूंगा आकार जो मेरे दिल को भाएगा, तराशूंगा कुछ इस तरह से करिश्मा खुदा का हो जाएगा, देखने वाला देखता ही रह जाएगा, रूप की चांदी होगी प्यार का सोना होगा, रंग वफा के भरूंगा और करता हूँ वादा कि प्यार कभी ना दूजा करूंगा।

पैगाम लिया है कभी, पैगाम दिया है, आंखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है। न जाने क्या कशिश है उनकी मदहोश आंखों में, नज़र उनसे हटती ही नहीं। आंखों की लबों से जंग भी क्या खूब होती है, लब जो कहते हैं चले जाओ तो आंखें रोक लेती हैं। आंखें बयां करती हैं दिल का हाल, न जाने क्या होता है जब सामने हो तुम। भूल जाते हैं सब, बस दिखता है तो आंखों में प्यार। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मोहब्बत में जुबा बंद होती है, आंखें बात करती है।

हर प्रेम कहानी में एक प्रेमी जोड़ा होता है और हर प्रेमी जोड़े की एक कहानी होती है, किसी की पूरी तो किसी की अधूरी होती है। कहानी में रूठना, मनाना, मिलना, बिछड़ना सब होता है। प्यार करने वाले बादल और पानी की तरह होते हैं, जो मिलते हैं तो खूब बरसते हैं, या फिर दिए और बाती की तरह होते हैं, जो जले तो साथ, बुझे तो साथ। कुछ दूर चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे ना जिसे तुम वो आंखों से कह देंगे। लबों पर जो रह गई प्रेम निशानी है तू, मेरे होठों की हंसी मेरी कहानी है तू।

जब प्रेम का रोग लग जाता है तो प्रेमी को सारी दुनिया में बस उसकी प्रेमिका ही दिखती है और बड़े प्यार से कहता है, क्या खूब लगती हो। इतरा कर प्रेमिका कहती है, फिर से कहो, सुना नहीं। प्रेमी जब तारीफ करता है तो प्रेमिका की आंखों में हजारों फूल खिल जाते हैं, चेहरे पे मुस्कान होती है, सागर की लहरों की तरह मन में हिलोर उठती है। शर्मा कर कहती है, कितनी तारीफ करोगे। प्रेमी का प्यार भरा जवाब होता है, सांस रहेगी तब तक, चांद सितारे होंगे जब तक, तुम बेहद खूबसूरत हो, हर जीवन में तुम मेरी ही बनना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।

दो प्रेमी जब मिलते हैं तो एक दूसरे में खो जाते हैं। प्यार की बातें होती है, मुलाकातें होती हैं, एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो दिल भी अंगड़ाई लेता है। हाथों में हाथ लिए एक दूसरे से वादा होता है, साथ रहने का इरादा होता है। मिलने को मचल जाते हैं, ख्यालों में बहुत दूर तक निकल जाते हैं। जैसे ही खुद को संभालते हैं, होश आता है, तभी ये ख्याल आता है, जमाना क्या कहेगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूत

0: मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
4: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्य

0: कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है। बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, turns West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
6: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
5: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
6: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
5: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr.

लता मंगेशकर और शाबिर कुमार के स्वर में सुनिए बेताब फिल्म का गीत। रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481 2371 7116 2371 7106 और 2331444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है। चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज चलाएं, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है। आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूं कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी चल रही
0: है,
2: आग लगी और बहुत सारी आग हुई एसी की ब्लास्ट होने के से लगी। उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है।
0: जी, शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: जी,
3: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है, किस तरह से आग को पाया जा सकता है? क्योंकि हमारे जो कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं, लेकिन फायर पहुंची नहीं है, तो अग्नि को किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है?
0: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
1: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज्यादा होता है। और साधारणतः जो हम जंगलों की आग, जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहां पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कम्बस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है। तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
0: जी राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत।
4: नमस्कार जी निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे एमसीडी है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी राकेश जी।
2: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही है, संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
0: अतुल जी ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
2: देखिए ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत

0: मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डेसिपेट हो जाएगी। हमारे वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाए, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए है कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीजों का रखरखाव रखना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाईजर्स आते हैं, एमसीबीज आते हैं, आरसीबीज आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है, तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि ये सारी चीजें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्यूपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, डीएफएस, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है, तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है।
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी।
3: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है, तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्ते, हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
4: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे नमस्कार। कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है

0: रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियां होती है, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियां होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर घुसती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी। उस
1: धर्मवीर जी सवाल हम समझ गए,
0: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं।
0: नहीं लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप तीन सवाल पूछे जी।
0: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: धन्यवाद धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुंचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15 मिनट 16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियां हैं, गाड़ियां पार्क होती रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
2: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिलकर अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूंगा, ज्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस से लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहां हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज्यादा नुकसान हो गया। तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहां हम देखते हैं साड़ियां भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, पानी डाले, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, दो दो दिन लेती है
1: जी।
2: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो है प्रिकॉशन ले, हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
3: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है।
3: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल
3: पूछिए। हाँ, सर नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवाड़ तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
4: नमस्कार विजय।
3: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
4: हाँ विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लग गई तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमीडिएटली फोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बनके खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
4: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहां जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
5: नमस्कार जी, श्रीपाद जाखड़ो बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
5: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कभी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं होता है, तो मतलब ये मेरा
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें।
4: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहां पे जो जलने वाली चीज है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते हैं उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
6: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
6: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
4: नमस्कार नमस्कार
6: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से, गलती से, और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किए, दो नंबर है, आप इनको याद रखिए, 101 और 112, आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी,
2: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है अगर

0: नॉर्मली सिलेंडर में आग लग भी गई है सिलेंडर, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी। तो उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर है, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने जो जहां भी फायर ब्रिगेड है, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहां चिट्ठी लिखे, वहां से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
0: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूं कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सभी राज्यों को दिया गया है। तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए, उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी,
2: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है, पानीपत से है, ये शैलेंद्र शेंदुर कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसे स्थिति में क्या कर सके? CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
2: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए, और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से निकल जाना है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा, जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें यह है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
3: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं, या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
0: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी ईएलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है आप ही के पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

0: श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम में आपके पत्रों और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के, बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। इस गीत की फरमाइश की है हमें यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार ने। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश मेंडी, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा ने। रामगंज खंडवा से सुनना चाहते हैं विजय महोविया, कविता, संजय, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डाली, देवराज और भैयू दादा। मोहाली चंडीगढ़ से सुनना चाहते हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से सुभाष चंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल। नेपाल पैलेस सागर से इस गीत की फरमाइश की है हमें तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। नांदखेड़ जिला वाशिम से सुनना चाहते हैं अशोक चुंबले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चेताली, प्रीति और समस्त चुंबले परिवार। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से सुनना चाहते हैं राजेश कुमार धनंजय, राहुल कुमार धनंजय, विशाल, शीला और गायत्री धनंजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा, नीतू और समस्त वेद परिवार। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

शक्ति इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन है आर डी बर्मन की और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादीक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। कवर कॉलोनी बढ़वा से सुनना चाहते हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय। दुबिहा नेवादा से गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। गाजीपुर से ही सुनना चाहते हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेम नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

हीर रांझा। इस फिल्म का गीत सुनिए अनवर और लता मंगेशकर के स्वर में, बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और इस गीत की फरमाइश की है हमें छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं गजानन येले नवदीप, और शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, बड़बूंजी जिला आगर से रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, आयुष और अमंग और ओम प्रकाश, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश, मोटक्का माफी जिला खंडवा से सुनना चाहते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, कनक पटेल और मन पटेल। सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान, शकीला बानो, रुखसार बानो, मोहम्मद आरिश, अमरावती प्रवीण नगर से चंदूजी हातोले। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

सरगम, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और रफी के स्वर में, बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और इस गीत की फरमाइश की है हमें रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा ने। सपना संगीता रोड इंदौर से सुनना चाहते हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा और हनुमान बोड़खे। गौतम नगर जिला नांदेड़ से ही सुनना चाहते हैं प्रभाकर जोंदले और आरती। वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता सुरेंद्र, पूजी विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। श्री रोडकेश्वर श्रोता संघ छत्रपति शाहूनगर हिंगोली से पेंटर रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत हिंगोले, टिंकू हिंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र हिंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम हिंगोले। अशोकनगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से ही सुनना चाहते हैं पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू और मोनू ठोके। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गायन पंडित शंभु प्रसाद प्रवार का। राग है चारू केसी, वायलन वादन है कमल कामले का और तबला संगत है मनीष खार गांवकर की।

अभी आप सुन रहे थे गायन पंडित शंभू प्रसाद पंवार का, राग था चारू केसी। वायलिन पर थे कमल कामले, तबला संगत थी मनीष खरगोनकर की। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।